जिनको पूर्व लिखिया सतगुर मिलिया तिन आए, आंदे नाम ते आएंदे नानक सच समाए। महला तीजा, सच वण जै सच सेम दे जे गुरमुख पैरी पाहे। नानक गुर कै पाणै जे चलै सहजे सच समाहे। पौड़ी आसा विच अत दुख कणा मन मुख चित लाया, गुरमुख पए निरास परम सुख पाया। विचे ग्रह उदास अलिप्त लिव लाया, ओना सोग विजोग ना व्यापई हर पाणा पाया। नानक हर सेती सदा रव रहे तुर ले मिलाया। श्लोक महला तीजा, पराई अमान क्यों रखी है दित्ती ही सुख होए। गुर का शब्द गुर थै टिकै होर थै प्रगट ना होए। अन्ने वस मानक पाया घर घर वेचण जाए, ओना परख ना आवई अडना पल्लै पाए। जे आप परख ना आवई ता पारखिया थावो लै ओ परखाए। जे ओस नाल चित लाए ता वथ लहै नौनिद पल्लै पाए। घर होंदै धन जग भुखा मुआ बिन सतगुर सोझी ना होए। शब्द शीतल मन तन वसै तिथै सोग विजोग ना कोए। वस पराई आप गर्ब करे मूर्ख आप गणाए। नानक बिन बूझे किने ना पायो फिर फिर आवै जाए। महला तीजा, मन आनंद भया मिलिया हर प्रीतम। सरसे सज्जन संत प्यारे जो तुर मिले ना विछड़े कबहू। जे आप मेले करतारे अंतर शब्द रविया गुर पाया। सगले दुख निवारे हर सुख दाता सदा सलाही अंतर रखा उर तारे। मन मुख तिनकी बखीली के करे जे सच्चा शब्द सवारे। ओना दी आप पत रख सी मेरा प्यारा शरणागत पए गुरुद्वारे। नानक गुरमुख से सुहेले पए मुख उजल दरबारे। पौड़ी स्त्री पुरख है बहु प्रीत मिल मोह वधाया। पुत्र कलतर नित वेखै विकसै मोह माया। देश परदेश धन चोराए आन मोहे पाया। अंत हो वै वैर विरोध को सकै ना छड़ाया। नानक बिन नावै त्रिग मोह जित लग दुख पाया। श्लोक महला तीजा, गुरमुख अमृत नाम है जित खादै सब भुख जाए। तृष्णा मूल ना होवई नाम वसै मन आए। बिन नावै जे होर खाना तित रोग लगै तन ताए। नानक रस का सो शब्द सलाहना आपे ले मिलाए। महला तीजा, जिया अंदर जियो शब्द है जित सह मेलावा होए। बिन शब्द जग अनेर है शब्दे प्रगट होए। पंडित मोनी पढ़ पढ़ थके पेख थके तन धोए। बिन शब्द किने ना पायो दुखिए चले रोए। नानक नदरी पाई है कर्म प्राप्त होए। पौड़ी स्त्री पुरख है तने हो बहमंद पकाया। तिसदा सब किस चल सी मेरे प्रभ पाया। क्यों रही है थिर जग को कड्डो उपाया। गुरपुरे की चाकरी थिर कंध सवाया। नानक बख्श मिलाया न हर नाम समाया। श्लोक महला तीजा, माया मोहे विसारिया गुर का पौहे त्यापार। लोभ लहर शुद्ध मत गई सच ना लगे प्यार। गुरमुख जिन्ना शब्द मन वसै दर गए मुख द्वार। नानक आपे मिल लए आपे बख्शनहार। महला चौथा, नानक जिस बिन घड़ी ना जीवना विसरे सरै ना बिंद। तेस्यों क्यों मन रूसी है जसै हमारी चिंद। महला चौथा, सामने आया चिम चिमा हर गुरमुख नाम ते आए। दुख भुख काड़ा सब चुकाए सी मीहो उठा शैबर लाए। सब धरत पई हरियावली अनजमिया बोहल लाए। हर अचिंत बुलावै किरपा करो हर आपे पावै थाए। हर तसै त्यावो संत जनो जोवंते ले छडाए। हर कीर्त भगत आनंद है सदा सुख वसै मन आए। जिन्ना गुरमुख नाम आराध्या तिन्ना दुख भुख लै जाए। जन नानक तृप्तै गाए गुण हर दर्शन देहो सुभाए। पौड़ी गुरपुरे की दात नित देवै चढ़ै सवाइया। तुस

देवै आप दयाल ना छपै छिपाइया हृदय कवल प्रगास उन मन लिवलाइया जे को करे उस दी रीस सिरशाई पाइया नानक अपड़ कोई ना सकई पूरे सदगुर की वड्याईया। सलोक महला तीजा अमर वे प्रवाहो है तिस नाल सियाणपना चलई ना हुजत करनी जाए आप छोड़ सरनाए पवै मन लय रजाए गुरमुख जम डंड ना लगई हौ मैं विच हों जाए नानक सेवक सोई आखिया जे सच रह लिवलाए महला तीजा। दात जोत सब सूरत तेरी बहुत सियाण पहो मैं मेरी बहु कर्म कमावै लो मुह व्यापे हौ मैं कदे ना चूकै फेरी नानक आप कराए करता जोत सपावै साई गल चंगेरी। पौड़ी महला पंजवां सच खाना सच पहनना सच नाम आधार गुरपुरे में लाया प्रभ देवनहार भाग पूरा तिन जागया जपया निरंकार साधु संगत लगया तरिया संसार नानक सब सलाहकार प्रभ का जयकार। श्लोक महला पंजवां सबे जी समाल अपनी मेहर कर अन पानी मुचो पाए दुख दाल दुपहन तार अरदास सुनी दातार होई सिष्ट ठार लेवो कंठ लगाए अपदा सबहार नानक नाम ते आए प्रभ का सफल कार। महला पंजवां वुठे मेघ सुहावने हुक्म कीता करतार रिजको पायो ने अगला ठंड पई संसार तन मन हरिया होया सिमरत अगम अपार कर कृपा प्रभ अपनी सच्चे सृजनहार कीता लोड़ै सो करै नानक सद बलिहार। पौड़ी वड्डा आप अगम है वड्डी वड्याई गुरसबदी वेख विकसिया अंतर सांत आई सब आपे आप वरदा आपे है पाई आप नाथ सब नथियन सब हुक्म चलाई नानक हर पावै सो करे सब चलै रिजाई। सुध राग सारंग बाणी भगता की कबीर जी एक ओंकार सतगुर प्रसाद कहा नर गर्भस्थोरी बात मन दस दाज टका चार गांठी एंडो टेंडो जात रहाओ बहुत प्रताप गांव सौ पाए दो लख टका बरात दिवस चार की करो साहेबी जैसे बनहर पात ना को ले आयो एहो तन ना को ले जात रावण हूते अधक शत्र पात खिन में गए बिलात हर के संत सदा थिर पूजो जो हर नाम जपात जिन को कृपा करत है गोविंद ते सतसंग मिलात मात पिता बंता सुत संपत अंत ना चलत संगात कहत कबीर राम भज बौरे जन्म अकार्थ जात राजा श्रम मित नहीं जानी तेरी तेरे संतन की हों चेरी रहाओ हस्तो जाए सरोवत आवै रोवत जाए सो हसै बस्तो होए होए सो उजर उजर होए सो बसै जल ते

काम ना बिसरियो क्रोध ना बिसरियो लोभ ना छूटियो देवा पर निंदा मुक्ते नहीं छूटी निफल पई सब सेवा बाट पार कर मूस बिरानो पेट पर है अपराधी जेह पर लोग जाए अपकीर्त सोई अविद्या साधी हिंसा तो मनते नहीं छूटी जी दया नहीं पाली परमानंद साध संगत मिल कथा पुनीत ना चाली शाड मानो हर बिमुखन को संग सारंग महला पंजवा सूरदास एको अंकार सतगुर प्रसाद हर के संग बसे हर लोक तन मन अर्प सर्बस सब अर्प्यो आनंद सहज धुन चोक रहाओ दर्शन पेख पय निर्भखई पाए है सगले थोक आन बस्त स्यों काज ना कछु है सुंदर बंदन्या लोक श्याम सुंदर तज आन जो चाहत ज्यो कुष्टि तन जोक सूरदास मन प्रभ हथ लीनो दीनो इहो परलोक सारंग कबीर जियो एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर बिनो कौन सहाई मन का मात पिता भाई सुत बंता हित लागो सब फन का रहाओ आगे कहो किस तुल्हा बंद हो क्या परवासा तन का कहां बिसासा इस भांडे का इतनक लागे ठन का सागल धर्म पुन फल पावहो तूर बांचो सब जन का कह कबीर सुनोरे संतो एहो मन उडन पंखेरू बन का राग मलार चौप दे महला पहला कर पहला एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्ता जूनी सह भंगुर प्रसाद खाना पीना हसना सौना विसर गया है मरना खसम विसार खुवारी कीनी त्रिग जीवन नहीं रहना प्राणी एको नाम ते आवो अपनी पासेती कर जावो रहाओ तुदनो सेव है तुझ क्या देव है मांगे ले वह रह नहीं तू दाता जिया सबना का जिया अंदर जियो तुही गुरमुख त्यावै से मृत पावै से ही सुचे हो ही अहनिस नाम जपोरे प्राणी मैले हच्छे हो ही जेही रुत काया सुख तेहा ते हो जेही देही नानक रुत सुहावी साई बिन नाम है रुत के ही मलार महला पहला करो बिनो गुरे अपने प्रीतम हर वरे आन मिलावै सुन कन कोर शीतल मन मोरा लाल रती गुण गावै बरस घना मेरा मन पीना अमृत बूंद सुहानी ही रै गुरमोही मन हर सलीना रहाओ सहज सुखी वर कामन प्यारी जिस गुरबचनी मन मानिया हर वर नार पई सुहागण मंतन प्रेम सुखानिया अवगण त्याग पई बैरागण आस्तर वर सोहाग हरी सोग विजोग तिस कदे ना व्यापै हर प्रभ अपनी कृपा करी आवन जान नहीं मन निर्मल आवन जान नहीं मन निचल पूरे गुर की ओट गही नानक राम नाम जप गुरमुख तन सुहागण सच सही मलार महला पहला साची सुरत नाम नहीं तृप्ते हों मैं करत गवाया पर तन पर नारी रत निंदा बिख खाई दुख पाया शब्द चीन पै कपट ना छूटे मनमुख माया माया अजगर पार लदे अत भारी मर जन्मै जन्म गवाया मन पावै शब्द सुहाया भ्रम भ्रम जोन पेख बहु कीने गुर राखे सच पाया रहाओ तीर्थ तेज निवार ना नाते हर का नाम ना पाया रतन पदार्थ पर हर त्यागया जत को तत ही आया बिष्टा कीट पय उतही ते उतही महे समाया अधिक स्वाद रोग अधकाई बिन गुर सहज नाम पाया सेवा सुरत रहस गुण गावा गुरमुख ज्ञान बिचारा खोजी उपजै बादी बिरसै हम बल बल गुर करतारा हम नीच होते हीन मत झूठे तू शब्द सवार नहारा आत्म चीन तहां तू तारण सच तारे तारनहारा बैस सुथान कहां गुण तेरे क्या क्या कथो अपारा अलख न लखिए अगमा जोनी तू नाथा नाथन हारा किस पै देख कहो तू कैसा सब जाचक तू दा तारा भगतहीन नानक दर देखो एक नाम मिले उर तारा मलार महला पहला जिन तन पिर का साधना जानिया सा बिलख बदन कुमलानी पई निरासी कर्म की फासी
ਬਿਨ ਗੁਰ ਭਰਮ ਭੁਲਾਨੀ ਬਰਸ ਘਨਾ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਘਰ ਆਇਆ ਬਲ ਜਾਵਾਂ ਗੁਰੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਿਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭਿਆਨ ਮਿਲਾਇਆ ਰਹਾਓ ਨਵ ਤਨ ਪ੍ਰੀਤ ਸਦਾ ਠਾਕਰ ਸਿਉ ਅੰਦਨ ਭਗਤ ਸੁਹਾਵੀ ਮੁਕਤ ਭਏ ਗੁਰਦਰਸ ਦਿਖਾਇਆ ਜੋ ਜੋ ਭਗਤ ਸੁਭਾਵੀ ਹਮ ਥਾਰੇ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਜਗ ਤੁਮਰਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹਉ ਤੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਨਿਰੰਜਨ ਪਾਇਆ ਬਹੁਰ ਨਾ ਪਵਜਲ ਫੇਰਾ ਆਪਣੇ ਪਿਰਹਰ ਦੇਖ ਵਿਗਾਸੀ ਤਉ ਧਨ ਸਾਜ ਸਿੰਗਾਰੋ ਅਕੁਲ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿਉ ਸੱਚ ਸਾਚੀ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਆਧਾਰੋ ਮੁਕਤ ਭਈ ਬੰਧਨ ਗੁਰ ਖੋਲੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਪਤ ਪਾਈ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਮੇਲ ਮਿਲਾਈ।

बरसै मेघ सखी कर पा होने आए, मोहे दीन कृपा निध ठाकर नवनिध नाम समाए रहाओ, अनक प्रकार भोजन बहु किए बहु व्यंजन मिष्टाए, करी पागसाल सोच पवित्रा हुन लावो भोग हर राए, दुष्ट बिदारे साजन रहसे एह मंदर कर अपनाए, जौ ग्रह लाल रंगी ओ आया तौ मैं सब सुख पाए, संत सवाय ओट गुरपूरे तुर मस्तक लेख लिखाए, जन नानक कंत रंगीला पाया फिर दुख ना लागे आए, मलार महला पंजवां खीरा धार बारक जब होता बिन खीरा रहन न जाई, सार संभाल माता मुख नीरै तबो तृप्त अगाई, हम बारक पिता प्रभदाता भूलै बारक अनक लख बरिया, अनठौर नाही जय जाता रहाओ, चंचल मत बारक बपरे की सर्प अगन कर मेलै, माता पिता कंठ लाए राखै आनंद सही तब खेलै, जिसका पिता तू है मेरे स्वामी तिस बारक भूख कैसी, नव निध नाम निदान ग्रह तेरा मन बांछै सो लैसी, पिता कृपाल आग्या हे दीनी बारक मुख मांगै सो देना, नानक बारक दर्श प्रभ चाहै मोहे हृदय बसै नित चरना, मलार महला पंजवां सगल विधि जो रिया हर करया तजो सगलां देसा, कार्य सगल अरंभ्यो घर का ठाकर का पारोसा, सुनिया बाजै बाज सुहावी भोर भया मैं प्रेम मुख पेखे, गृह मंगल सोहलावी रहाओ, मनुआ लाए सवारे थाना पूछो संतां जाए, खोजत खोजत मैं पाहुन मिलियो भगत करो ने उपाए, जब प्रे आए बसे गृह आसन तब हम मंगल गाया, मीत साजन मेरे पए सुहेले प्रभ पूरा गुरु मिलाया, सखी सहेली पए आनंदा गुर कार्ज हमरे पूरे, कहो नानक वर मिलिया सुखदाता छोड़ न जाई दूरे, मलार महला पंजवां राज ते कीट कीट ते सुरपत कर दोख जठर कौ भरते, कृपा निध छोड़ आन कौ पूजै आत्म काती हरते, हर बिसरत ते दुख दुख मरते अनक बार प्रमै बो जोनी, टेक न काहू धरते रहाओ, त्याग स्वामी आन कौ बिचर चितवत मूड मुग्ध खल खरते, कागर नाव लंघै कथ सागर बिरथा कथत हम तरते, शिव बिरंच असुर सुर जेते काल अग्न मैं जरते, नानक सरन चरण।

राम नाम बोलै मधुर बैन अत सुहिया, ऐसी तेरे दर्शन की शोभ अत्यापार प्रयामोग, तैसे ही संग संत बने पाव उतार नाम पने, राम राम राम माल मन फेरते हर संग संगिया, जन नानक प्रयो प्रीतम थिया। मलार महला पंजवा, मन कने प्रमे बने उमकत रस चाले, प्रमिलबे की चाह रहाओ, त्रै गुण माई मोहे आई, कहो बेदन काहे आने उपाव सगर किए, न दुख सा कैलाहे, पज सरन साधु नानका मिल गुण गोबिंद गाहे। मलार महला पंजवा, प्रेकी सोब सुहावनी निकी, हा हा हू हू गंधर्व अपसरा, आनंद मंगल रस गावनी निकी रहाओ, तुनत ललत गुनाग अनक पांत, बहुबिध रूप दिखावनी निकी, गिर तर थल जल पवन भरपुर, कट कट लालन छावनी निकी, साध संग रामैया रस पायो, नानक जाके पावनी निकी। मलार महला पंजवा, गुरप्रीत प्यारे चरण कमल हृदय अंतर तारे, रहाओ दर्श सफल्यो दर्श पेख्यो, गए किल बिख गए मन निर्मल उजियारे, बिसम बिसम बिसम पई, अड़ग कोट हरते नाम लई, गुर चरण मस्तक डार पही, प्रभ एक तू ही भगत टेक तुहारे, जन नानक शरण द्वारे। मलार महला पंजवा, बरस सरस आग्या होहे आनंद सगल भाग, रहाओ संत संगे मन पर फड़ै, मिल मेघ तर सुहाग, कन कोर प्रीत मोर चित चातरक बूंद ओर, ऐसो हर संगे मन मोह त्याग माया तोह, मिल संत नानक जागया। मलार महला पंजवा, गुण गोपाल गाओ नीत, राम नाम तार चीत रहाओ, छोड़ मान तज गुमान, मिल साधुआ कै संग, हर सिमर एक रंग मिट जाहे दोख मीत, पार ब्रह्म पहे दयाल, बिनस गए बिखे जंजाल, साज जना कै चरण लाग, नानक गावे गोविंद नीत। मलार महला पंजवा, कान गर्जत गोविंद रूप, गुण गावत सुख चैन रहाओ, हर चरण सरन तरन सागर, तुन अनहता रस बैन, पथक प्यास चित सरोवर आत्म जल लैन, हर दर्श प्रेम जन नानक कर कृपा प्रभ दैन। मलार महला पंजवा, हे गोविंद हे गोपाल, हे दयाल लाल रहाओ, प्राण नाथा नाथ सखे दीन दर्द निवार, हे समर्थ गम पूर्ण मोहे मया तार, अंधकूप महापयान नानक पार उतार। मलार महला पहला, अष्टपदियां कर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, चकवी नैन नींद न चाहे, बिन

प्रयो नाले सद ही सच संगे नदरी मेर मिलाई। समय जियो जियो है सोई घट घट रहा समाई, गुर प्रसाद कर ही प्रगासिया सहजे सह समाई। अपना काज सवारो आपे सुखदाते गोसाई, गुर प्रसाद कर ही पिरपाया तौ नानक तप्त बुझाई। मलार महला पहला, जागत जाग रह गुर सेवा बिन हर मैं को नाही, अनक जतन कर रहन ना पावे आच काच ढर पाही। इस तन धन का कहो गर्भ कैसा, बिनस्त बार न लागे बवरे हम मैं गर्भ खपे जग ऐसा रहाओ। जय जगदीश प्रभु रखवारे राखे परखे सोई, जेती है तेती तुझ ही ते तुम सर्यवर ना कोई। जियो पाए जुगत हथ कीनी आपे गुरमुख अंजन, अमर अनाथ सर्ब सिर मोरा काल बेकाल परम पै खंजन। कागद कोट एहो जग है बपरो, रंगन चिहन चतराई। नानी सी बूंद पवन पत खोवै जन मरै खिनताई। नदी उपकंठ जैसे कर तरवर, सरपन घर घर माही। उल्टी नदी कहां कर तरवर, सरपन डसै दूजा मन माही। गारड़ गुर ज्ञान ध्यान गुर बचनी, बिखिया गुरमत जारी। मन तन हेम पय सच पाया हर की भगत निरारी। जेती है तेती तुद जाचै तू सर्ब जिया दयाला, तुमरी शरण परे पत रखो साच मिलै गोपाला। बांदी तंद अंध नहीं सूजै, बदक कर्म कमावै। सतगुर मिलै ता सूजस बूजस सच मन ज्ञान समावै। निर्गुण देहे साच बिन साची, निर्गुण देहे साच बिन काची। मैं पूछो गुरे अपना नानक सो प्रभ प्रभु दिखावै, बिन साचे जग सुपना। मलार महला पहला, चात्र कमीन जल ही ते सुख पावै सारंग शब्द सुहाई। रैन बबीहा बोल्यो मेरी माई रहाओ, प्रे स्यों प्रीत ना उल्टै कबहू जोतै पावै साई। नींद गई हम मैं तन थाकी सच मत हृदय समाई।

अमृत पी जाई, हर भगती असनेह गुरमुख की जाई। सलोक महला तीजा, गुरमुख मलार राग जो करै, तिन मन तन शीतल होए, गुरसबदी एक पछाणिया एको सच्चा सोए। मन तन सच्चा सच मानो, सच्चे सच्ची सोए, अंदर सच्ची भगत है सहजे ही पत होए। कल युग में कोर अंधार है, मन मुख राहो ना कोए, सेवड़ भागी नानका जिन गुरमुख प्रगट होए। महला तीजा, इंद वरसै कर दया, लोका मन उपजै चाओ, जिसकै हुक्म इंद वरसदा, तिसकै सद बलिहार है जाओ। गुरमुख शब्द संभालीऐ, सच्चे के गुण गाओ, नानक नाम रते से जन निर्मले, नानक नाम रते जन निर्मले, सहजे सच समाओ। पौड़ी पूरा सतगुर से पूरा पाया, पूरा कर्म ते आए, पूरा शब्द मन वसाया, पूरा ज्ञान ध्यान मैल चुकाया, हर सर तीर्थ जान मनुआ नाया। शब्द मर मन मार, तन जने दी माया, दर सच्चे सच्चियार सच्चा आया, पुछ न सकै कोए जा खसमै पाया, नानक सच सलाहे लिखिया पाया। सलोक महला पहला, कुलहां देंदे बावले, लेंदे वड्डे निलज, चूहा खड न मावई तिकल बन्ने छज, देन दुआई से मर जिनको देन से जाहे, नानक हुक्म ना जापई किथे जाए समाहे। फसल अहाड़ी एक नाम, सामनी सच नाओ, मैं महदूद लिखाया, खसमै कैदर जाए,

वे प्रवाहो शब्द संतोखिया गहर गंभीरा था हो हाथ न लबई मोहे मोहे चोटा खा हो विणगुर कोई न छुटसी पत से ती कर जाहो नाम खानिया हुक्मी सागरा दिंदा जानिया। सलोक महला पहला पौने पानी अग्नि जियो तिन क्या खुशिया क्या पीड़ धरती पाता लिया काशी एक दा रहन वजीर एक ना वड्डी आर जा एक मर होहे जहीर एक देखाहे न खुटै नाही एक सदा फिरै फकीर हुक्मी साजे हुक्मी टाहे एक चसे मै लख सबको नथे नथिया बख्शे तोड़े नथ वरना चिहना बाहरा लेखे बाजा लख क्यों कथिया क्यों आखिया जापै सचो सच करना कथना कार सब नानक आप अकथ अकथ की कथा सुने रिद्ध बुद्ध सिद्ध ज्ञान सदा सुख होए महला पहला अजर जरै ता नौ कुल बंद पूजे प्राण होवै थरकंद कहां ते आया कहां एहो जान जीवत मरत रह प्रमाण हुक्मै बूझै तत् पछाणै एहो प्रसाद गुरु ते जाणै होंदा फड़ी अग नानक जान ना हों ना मैं जूनी पाण पौड़ी पढ़िया नाम सलाह होर बुद्धि मिथ्या बिन सच्चे वापार जन्म बिरथया अंत ना पारा वार ना किन्ही पाया सब जग गर्भ गुबार तिन सच ना पाया चले नाम विसार तावण ततया बलदी अंदर तेल दुबदा कतया आया उठी खेल फिर उवत्या नानक सच्चै मेल सच्चै रत्या। सलोक महला पहला पहला मासो निम्या मासे अंदर वास जियो पाए मास मोहे मिलिया हड चम तन मास मासो बाहर कड्या ममा मास ग्रास।

मासो ही मासी उपजै मासो सबो साक। सतगुर मिलिया हुक्म बुझिया ताको आवै रास, आप छुटे न छुटी है नानक बचन विनाश। महला पहला। मास मास कर मूर्ख झगड़े ज्ञान ध्यान नहीं जाने, कौन मास कौन साग कहावे किसमें पाप समाने। गेंडा मार होम जग किए देवत्यां की बाणे, मास छोड़ बैस नक पकड़े राती मान सखाने। फड़ कर लोका नो दिखलावे ज्ञान ध्यान नहीं सूझे, नानक अंधे से क्यों कहिए नानक अंधे से ओ क्या कहिए, कहे न कहे आबूजे। अंधा सोए जे अंध कमावे तिस हृदय से लोचन नाही, मात पिता की रक्त निपन्ने मच्छी मांस ना खाही। स्त्री पुरख है जानिस मेला ओथे मंद कमाही, मासो निम्मे मासो जम्मे हम मासे के पांडे। ज्ञान ध्यान का सूझै नाही चतर कहा वह पांडे। बाहर का मास मंदा स्वामी घर का मास चंगेरा, जी जंत सब मासो होए जी लया वासेरा। अपख पख पख तज छोड़ अंध गुरु जिन केरा, मासो निम्मे मासो जम्मे हम मासे के पांडे। ज्ञान ध्यान कछ सूझे नाही चतर कहा वै पांडे। मास पुराणी मास कते भी चह युग मास कमाना, जज काज भी आहे सुहावे उथे मास समाना। स्त्री पुरख निपजै मासो पातशाह सुल्ताना, जे ओए दिसै नरक जांदे ता उनका दान ना लेना। देंदा नरक सुर्ग

मास्य उपन्ना तोयो अनक मादक पाहा तोयो त्र भवन गन्ना तोवा आखे हाँ बोबिध हच्छा तोवै बहुत बेकारा एते रस छोड़ होवै सन्यासी नानक कह विचारा। पौड़ी हाउ क्या आखा एक जीव तेरा अंतरा किन्ही पाया सच्चा शब्द विचार से तुझी माए समाया। एक भगवा वेसकर परम देवन सतगुर के ना पाया दे दिसंतर पव थके तुद अंदर आप लुकाया। गुर का शब्द तन है कर चानने आप दिखाया अपना आप पछाणिया गुरमती सच समाया आवा गुण बजारिया बाजार जिनी रचाया। एक थिर सच्चा सलाहना जिन मन सच्चा पाया सलोक महला पहला नानक माया कर्म बिरख फल अमृत फल वेस सब कारण करता करे जिस खवाले तिस महला दूजा। नानक दुनिया किया वड़ियाइया अग्गी से तीजाल इनी जली ना विसारे आयक ना चलिया नाल। पौड़ी सिर सिर होए नबेड़ हुक्म चलाया तेरे हथ नबेड़ तू है मन पाया। काल चलाए बन कोई ना रखसी जर जरवाना कन चढ़िया नचसी सतगुर बोथ बेड़ सच्चा रखसी अगन पखे पड़हार अंदर पक्षी फाथा चुगे चोग हुक्मी छुटसी करता करे सहोग कून निखुटसी। सलोक महला पहला कर मैं कर दे खाए दे सो सतगुर पुरख सुजान पंच शब्द तुन कार तुन तह बाजै शब्द निशान। दीप लो पाताल तह खंड मंडल हैरान तार कोर बाजंतर तह साज तख्त सुल्तान। सुख मन कै कर राग सुन सुन मंडल लिव लाए कथ कथा बिचारी है मनसा मन समाए। उल्ट कमल अमृत भरिया एहो मन कतो ना जाए अजप्पा जापना विसरे आज जुगा समाए। सब सखियां पंचे मिले गुरमुख निज करवास शब्द खोजे हो कर लहै नानक ताका दास। महला पहला चिल मिल बिसियार दुनिया फानी कालूब अकल मन गोर ना मानी मन कमीन कम तरीन तूंदरिया खुदाया। एक चीज मुझे देह अवर जहर चीज ना पाया पुराब खाम कूजै हिकमत खुदाया। मन तो आना तू कुदरती आया सग नानक दीवान मस्ताना नित चढ़े सवाया आतस दुनिया खुनक नाम खुदाया। पौड़ी नवी महला पंजवा सबो वरते चलत चलत वखाणिया पार ब्रह्म परमेसर गुरमुख जाणिया। लथे सब विकार शब्द नी साणिया साधु संग उदार पहे निकाणिया। सिमर सिमर दा तार सब रंग माणिया प्रगट पया संसार मेहर शाह वाणिया। आपे बख्श मिलाए सद कुरबाणिया नानक लय मिलाए खसमै पाणिया। सलोक महला पहला तन सो कागद कलम तन तन भांडा तन मस तन लेखारी नानका जिन नाम लिखाया सच। महला पहला आपे पट्टी कलम आप उपर लेख पे तू एको कहिए नानका दूजा काहे कू। पौड़ी तू आपे आप वरदा आप बणत बनाई तुझ बिन दूजा को नहीं तू रहा समाई। तेरी गत में तू है जानदा तुद कीमत पाई तू अलाखा गोचर अगम है गुरमुख दिखाई। अंतरा ज्ञान दुख परम है गुर ज्ञान गवाई जिस कृपा करे तिस मेल लै सो नाम ते आई। तू करता पुरख्या गम है रविया सब ठाई जित तू लाए सच्चा तित को लगै नानक गुण गाई सुध। राग मलार बाणी भगत नाम देव जियो की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सेवी ले गोपाल राया कुल निरंजन भगत दान दीजै जाचै संत जन रहाओ। जाचै घर दिग दिसै सराय

राय परली प्रतहार सो ऐसा राजा श्री गोपाल जांचै कर गण गंधर्व रिखी बपड़े ढाडिया गवंत आचै सर्व शास्त्र बहु रूपिया अन गरुआ आखाड़ा मंडलीक बोल बोलै काछे चौर ढूल जांचै है पवन चेरी सकत जीतले पवन अंड टूक जाकै पसमती सो ऐसा राजा त्रिपवनपति जांचै कर कूरमा पाल सहसरफनी बासक सेज वालुआ अठारह पार बनास्पति मालनी छिनवै करोड़ी मेघमाला पानी हारिया नख प्रसेव जांचै सुरसरी सप्त समुंद जाकै कड़थली ए तेजी जांचै वर्तनी सो ऐसा राजा त्रिपवन धनी जांचै कर निकटवर्ती अर्जन त्रू प्रहलाद अमरीक नारद निजै सिद्ध बुद्ध गण गंधर्व बान वह हेला एते जी जांच है करी सर्व व्यापक अंतर हरी प्रण वह नाम दो ताची आन सगर भगत जाचै निशान मलार मोको तू ना बिसार तू ना बिसार तू ना बिसारे रमैया रहाओ आलावंती हो प्रम जो है मुझ ऊपर सब कोपला सूद सूद कर मारो उठायो कहां करो बाप बीठला मुए हुए जो मुक्त दे होंगे मुक्त ना जाने कोयला ए पंडिया मोको टेढ़ कह तो तेरी पैज पछौंडी होएला तू जो दयाल कृपाल कहियत है अद पुज पयो अपारला फेर दिया देहरा नामे कहो पंडियान कहो पिछवारला मलार बाणी भगत रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद नागर जना मेरी जात बख्यात चमारंग हृदय राम गोबिंद गुण सारंग रहाओ सुरसरी सलल कृत बार नीरे संत जन करत नहीं पानंग सुरा अपवित्र नत अवर जल रे सुरत सुरसरी मिलत न होए आनंग तार तार अपवित्र कर मानिया रे जैसे कागरा करत बिचारंग भगत पागौत लिखिए तेह उपरे पूजिए कर नमस्कारंग मेरी जात कुट बांडला ढोर टोवंता नितै बनारसी आस पासा अब बिपर प्रधान ते कर डंडौत तेरे नाम सरण आए रविदास दासा मलार हार जपत तेउ जना पद्म कवलास पात ता सम तुल नहीं आन को एक ही एक अनेक होए बिस्थरयो आन रे आन पर पुरसो रहाओ जा कह भागवत लेखी है अवर नहीं पेखी है तास की जाता शोप शीपा ब्यास मैं लेखी है सनक मैं पेखी है नाम की नाम ना सप्त दीपा जा कह ईद बकरीद कुल गौरे बद करे मानिए सेख शहीद पीरा जा कह बाप वैसी करी पूत ऐसी सरी तिहू रे लोक प्रसिद्ध कबीरा जाके कुटंब के ढेड़ सब ढोर ढोवंत फिरै अजो बनारसी आस पासा आचार सहत बिपर करहत डंडौत तिन तनै रविदास दासान दासा मलार एक ओंकार सतगुर प्रसाद मिलत प्यारो प्राणनाथ कवन भगत साल संगत पाई परम गते रहाओ मैले कपरे कहां लो धोवो आवेगी नींद कहां लग सोवो जोई जोई जोरियो सोई सोई फाटियो झूठे बनज उठ ही गई हटियो कहो रविदास।

हमरे हर प्राण सखा स्वामी हर मीता, मेरे मन तन जी हर हरे, हरे राम नाम तन माल, जाको भाग तिन लियो री सुहाग, हर हर हरे हरे गुण गावे गुरमत, हौं बलबले हौं बलबले, जन नानक हर जप पही, निहाल निहाल निहाल, कानड़ा महला चौथा, हर गुण गावो जगदीश, एका जी कीचे लख बीस, जप हर हर शब्द जपीस, हर हो कृपीस रहाओ, हर कृपा कर स्वामी हम लाए हर सेवा, हर जप जपे जप जपो जगदीश, तुमरे जन राम जपे ते उत्तम, तिन कहो हाँ कुम कुमे कुम कुम जीस, हर तुम वड वडे वडे वड ऊचे, सो करे जे तुद पावीस, जन नानक अमृत पिया गुरमती, तन तन तन तन तन गुरु साबीस, कानड़ा महला चौथा, पज राम मन राम, जिस रूप नारेख वडाम, सतसंगत मिल पज राम, बड हो पाग मथाम रहाओ, जित ग्रह मंदिर हर होत जास, तित कर आनंदो आनंद, पज राम राम राम, राम नाम गुण गावो हर प्रीतम, उपदेश गुरु गुर सतगुरा, सुख होत हर हरे हर हरे, हरे पज राम राम राम, सब सिष्ट तार हर तुम कृपाल करता, सब तू तू तू राम राम राम, जन नानको शरणागति देहो गुरमति, पज राम राम राम, कानड़ा महला चौथा, सतगुर चट पग चाट, जित मिल हर पादर बाट, पज हर रस रस हर गाट, हर हो लिखे लिलाट रहाओ, खट कर्म क्रिया कर बहु बहु विस्थार, सिद्ध साधक जोगिया कर जट जटा जट जाट, कर पेख ना पाई हर ब्रह्म जोग हर पाई है, सतसंगति उपदेश गुरु गुर संत जना, गुर खोल खोल कपाट, तू अपरंपर स्वामी आता गाहा, तू भरपुर रया जल थले, हर एक एको एक एक है हर थाट, तू जाने सब विद बूझे आपे, जन नानक के प्रभ कट कटे कट कटे, कट हर काट, कानड़ा महला चौथा, जप मन गोविंद माधो, हर हर आगा दो, मत गुरमत हर प्रबला दो, तुर हो लिखे लिला दो रहाओ, बिख माया संच बहु चित बिकार, सुख पाइये हर पज संत संत संग दी, मिल सत गुरु गुर साधो, ज्यो शोहे पारस मनूर पए कंचन, त्यो पतत जन मिल संगति, सुध होवत गुरमति सुधादो, ज्यो काष्ट संग लोहा बहुतरता, त्यो पापी संग तरे, साध साध संगति, गुर सतगुरु गुर साधो, चार वर्ण चार आश्रम है, कोई मिले गुरु गुर नानक, सो आप तरे गुर सगल तरा दो, कानड़ा महला चौथा, हर जस गावो भगवान, जस गावत पाप लहान, मत गुरमत सुन जस कान, हर हो कृपान रहाओ, तेरे जन त्यावै एक मन एक चित, ते साधु सुख पावै, पज हर हर नाम निधान, उस्तत करह प्रभ तेरिया, मिल साधु साजना गुर सतगुरु भगवान, जिनके हृदय तू स्वामी ते सुख फल पावै, ते तरे पव सिंध ते भगत हर जान, तिन सेवा हम लाए हरे, हम लाए हरे, जन नानक के हर तू

कर कृपा मिले परमानंदा प्रमिले स्वामी सुखैगामी इच्छा इच्छ मन की पुनिया बजी बधाई सहजे समाई बहुत दुख न रुनिया लेकंठ लाए सुख दे कहाए।

रसक घटक नित पीजै, बसदा सबत दीप है सागर, कड कंचन कर तरीजै, मेरे ठाकर के जन इनो ना बांचै, हर मांगै हर रस दीजै, साकत नर प्राणी सत भूखे, नित भूखन भूख करीजै, तावत ताए ताव है प्रीत माया, लख कोसन कौ बिथ दीजै, हर हर हर हर हर जन उत्तम, क्या उपमा तिन दीजै, राम नाम तुल और ना उपमा, जन नानक कृपा करीजै। कल्याण महला चौथा, राम गुरपारस परस करीजै, हम निर्गुणी मनूर या तफीके, मिल सतगुर पारस की जय रहाओ, स्वर्ग मुक्त बैकुंठ सब बांछै, नित आसा आस करी जय, हर दर्शन के जन मुक्त ना मांगै, मिल दर्शन तृप्त मन तीजै, माया मोह सबल है भारी, मोह कालख दाग लगी जय, मेरे ठाकर के जन अलिप्त है मुक्ते, ज्यो मुर्गाई पंख ना पीजै, चंदन वास पयंगम वेड़ी, के मिलिए चंदन लीजै, काड खड़ग गुर ज्ञान करारा, बिक्षेद शेद रस पीजै, आन आन समदा बहुकीनी, पल बैसंतर पस्म करी जय, महायुगर पाप साक्त नरकी ने, मेरे साधु लुकी दी जय, साधु साधु साध जनि के जनंतर नाम तरी जय, परस निपरस पय साधु जन, जन हर भगवान दखी जय, साक्त सूत बहु गुरुजी भरिया, क्यों कर तंत नी जय, तंत सूत किशनिक सह नाही, साकत संग ना कीजै, सतगुर साध संगत है नीकी, मिल संगत राम रवीजै, अंतर रतन जिवे हर माणक, गुर कृपा ते लीजै, मेरा ठाकर वड्डा वड्डा है स्वामी, हम क्यों कर मिलै मिलीजै, नानक मेल मिलाए गुरपूरा, जन को पूर्ण दीजै। कल्याण महला चौथा, रामा राम रामो राम रवीजै, साधु साधु साध जनी के, मिल साधु हर रंग की जय रहाओ, जी जंत सब जग है जेता, मन डोलत डोल करी जय, कृपा कृपा कर साध मिलावो, जग थमन कौ थम दी जय, बसदा तला तला सभी ऊपर, मिल साधु चरण रुली जय, अति उत्तम अति उत्तम होवो, सब श्रेष्ठ चरण तल दी जय, गुरमुख जोत भली सिवनी की, आन पानी सख्त भरी जय, मैन दंत निकसै गुरबचनी, सार चब चब हर रस पी जय, राम नाम अनगुरो बहु किया, गुर साधु पुरख मिली जय, गुण राम नाम बिसीरन की है, हर सगल भवन जस दी जय, साधु साधु साध मन प्रीतम, बिन देखे रह ना सकी जय, ज्यों जल मीन जलंग जल प्रीत है, खिन जल बिन फूट मरी जय।

जागत बिकसै मूठो अंधा गल फाही सिर मारे तंदा आसा आवै मन सा जाए उर्जी ताणी किशना बसाए। जागस जीवन जागण हारा सुख सागर अमृत भंडारा रहाओ कहो ना बूझै अंध ना सूझै पूंडी कार कमाई आपे प्रीत प्रेम परमेसर करमी मिलै वडाई। दिन दिन आवै तिल तिल शीजै माया मोह कटाई बिन गुर बूढ़ो ठौर ना पावै जब लग दूजी राई। अहनस जिया देख संभाले सुख दुख प्रभ कमाई कर्महीन सच भीखिया मांगै नानक मिलै वडाई। प्रभाती महला पहला मस्त करो मूर्ख जग कहिया।

गुर का शब्द महारस मीठा, ऐसा अमृत वंतर डीठा, जिन चाख्या पूरा पद होए, नानक त्रप्यो तन सुख होए, प्रभाती महला पहला। अंतर देख शब्द मन मानिया, अवर न रंग नहारा, एनस जिया देख संभाले, तिस ही की सरकारा, मेरा प्रभ रांकण अतरूढ़ो, दीन दयाल प्रीत मन मोहन, आतरस लाल सगूढ़ो, रहाओ ऊपर कूप गगन पनिहारी, अमृत पीवन हारा, जिसकी रचना सोबित जाने, गुरमुख ज्ञान विचारा, पसरी किरण रस कमल बेगासे, संस्कार सूर समाया, काल विध्वंस मनसा मन मारी, गुर प्रसाद प्रपाया, आतरस रंग च लूले राती, दूजा रंग ना कोई, नानक रसन रसाए राते, रव रया प्रभ सोई। प्रभाती महला पहला, बारह मैं रावल खप जावे, चौछे मैं सन्यासी, जोगी कापड़िया सिर खूथे, बिन सब दे गलफासी।

प्रभाती बाणी भगत नामदेव जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मन की व्यर्था मन ही जानै कह बूझ लिया गै कहिए, अंतर जामी राम रवाई मैं डर कैसे चाहिए। बेदी अले गोपाल गोसाई मेरा प्रभ रवैया सर्वे ठाई रहाओ। मन है हाट मन है पाट मन है पासारी, मन है बस है नाना पेदी परमत है संसारी। गुर कै शब्द हो मन राता दुबदा सहि समाणी, सबो हुक्म हुक्म है आपे निरपो समत विचारी। जो जन जान भजै पुरखोत्म ताची अवगत बाणी, नामा कह जग जीवन पाया हृदय लख बिडाणी। प्रभाती आद जुगाद जुगाद जुगो जुग ता का अंत ना जानिया, सर्व निरंतर राम रया रव ऐसा रूप बखानिया। गोविंद गाजै शब्द बाजै आनंद रूपी मेरो रामैया रहाओ। बावन बिखू बाने बिखे बासते सुख लागला, सर्वे आद परमलाद काहट चंदन पहला। तुमचे पारस हमचे लोहा संगे कंचन पहला, तू दयाल रतन लाल नामा साच समायला। प्रभाती अकुल पुरख एक चलते उपाया, कट कट अंतर ब्रह्म लुकाया। जी की जोत न जाने कोई, तै मैं किया सो मालूम होई रहाओ। ज्यों प्रगासिया माटी कुंभे ओ, आप ही करता बीठल दे ओ। जी का बंधन कर्म व्यापै, जो किश किया सो आपै आपै। प्रणवत नाम देओ इहो जियो चितवै सो लह, अमर होए सद आकुल रह। प्रभाती भगत बेणी जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तन चंदन मस्तक पाती हृदयंतर कर तलकाती, ठग दिष्ट बगा लिव लागा देख बैसनो प्राण मुख भागा। कल भगवत बंद च रामं क्रूर दिष्ट रता निस्बादंग रहाओ। नित प्रत इशनान श्रीरंग दोय धोती कर्म मुख खीरंग, हृदय श्री संध्यानी पर दर्भ हरन की बानी। सिल पूजस चक्र गणेशं निस जागत निस जागस भगत परवेशं, पग नाचस चित अकर्मं एलम पट नाच धर्मं। मृग आसन तुलसी माला कर उजल तिलक कपाला, हृदय कूड़ कंठ रुद्राखं रे लंपट कृष्ण अपाखं। जिन आत्म तत् न चीनिया सब फोकट धर्म अबीनिया। कहो बेणी गुरमुख त्यावै बिन सतगुर बाट ना पावै। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूर्त अजूनी सह भंगुर प्रसाद। राग जय जयवंती महला नवा, राम सिमरो एह तेरे काज है। माया को संग त्याग प्रभ जू की शरण लाग, जगत सुख मान मिथ्या झूठो सब साज है रहाओ। सुपने जो तन पछान काहे पर करतमान, बारू की पीत जैसे बसदा को राज है। नानक जन कहत बात बिनस जह है तेरो गात, छिन छिन कर गयो काल तैसे जात आज है। जय जावंती महला नावा, राम भज जन्म सिरात है। कहो कहा बार बार समझत न क्यों गवार, बिनसत नह लगे बार उरे समगात है रहाओ। सगल परम डार दे गोबिंद को नाम ले, अंत बार संग तेरा यह एक जात है। बिखिया बिख ज्यो बिसार प्रभ को जस ही ये तार, नानक जन कह पुकार अवसर बिहात है। जय जावंती महला नावा, रे मन कौन गत होए है तेरी,
एह जग मैं राम नाम सो तौ नहीं सुनियो कान बिख्यन स्यो अत लुभान मत नान फेरी रहाओ। मानस को जन्म लीन सिमरन नै निमख कीन दारा सुख पयो दीन पगह परी बेरी। नानक जन कह पुकार सुपने ज्यो जग पसार सिमरत नहे क्यों मुरार माया जा की चेरी। जय जावंती महला नावा बीत जय है बीत जय है जन्म अकाज रे निस दिन सुन कै पुराण समझत न रे अजान। काल तौ पहुंचो आन कहां जह पाजरे रहाओ। अस्थिर जो मान्यो

मान नानक जन एह बखान जग मैं बिराज रे एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सह भंग गुर प्रसाद। श्लोक सहस कृति महला पहला पढ़ पुस्तक संध्या बादं सिल पूज सबगल समादं मुख झूठ बिपूखण सारं त्रैपाल तिहाल बिचारं गल माला तिलक लिलाटं दोय धोती बस्त्र कपाटं जो जानस ब्रह्मं कर्मं सब फोकट निश्चय कर्मं कौ नानक ने चौ त्यावै बिन सतगुर बाट ना पावै ने फलंग तस जन्मस जावद ब्रह्म न बिंदते सागरंग संसार स गुर प्रसादी तरह के करण कारण समर्थ है कौ नानक विचार कारण करते वस है जिन कल रखी तार योग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ता ब्राह्मण है खत्री शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृत है सर्व शब्दं ता एक शब्दं जे को जान सपेयो नानक ता को दास है सोई निरंजन देओ एक कृष्णं ता सर्व देवा देव देवा ता आत्मै आत्मं श्री वास देवस जे कोई जान सपेव नानक ता को दास है सोई निरंजन देव। श्लोक सहस कृति महला पंजवा एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सह भंग गुर प्रसाद। कतंच माता कतंच पिता कतंच बनता बिनोद सुतै कतंच प्रात मीत हित बंधव कतंच मोह कुटुंबयते कतंच चपल मोहनी रूपं पेखंते त्यागं करोत अरहंत संग भगवान सिमरन नानक लब्ध्यं अचत तने। त्रिगंत मात पिता स्नेहं त्रिग स्नेहं प्रात बांधवै त्रिग स्नेहं बंता बिलास सुतै त्रिग स्नेहं गृहार्थ कह साध संग स्नेह साध संग स्नेह सत्यं सुखयं बसंत नानक मिथ्यंत देहं खीणंत बलं वरदंत जरुआ हित्यंत माया अत्यंत आसा आथित पवनं गनंत स्वासा पयान धर्मं पतंत मोह कूप दुर्लभ देहं तत आश्रयं नानक गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोपाल कृपा काच कोटंग रचंत दोयंग लेपनंग रक्त चरमण है नवंत द्वारंग पीत रहतंग बाय रूपंग अस्थंबन है। गोविंद नामंग नय स्मरंत अज्ञानी जानंत अस्थरंग दुर्लभ देह उदरंत साध शरण नानक हर हर हर हर हर हरे जपंत सुभंत तोयंग अच्युत गुण अज्ञं पूर्णंग बहुलो कृपाला गंभीरंग उच्च सर्वज्ञ अपारा प्रत्याप्रंग विश्राम चरणं अनाथ नाथे नानक शरणं मिर्गी मिर्गी पेखंत बद्धक परहारेण लखयावद अहो जासर खेण गोपाल नानक रोमना छेद्यते बहु जतन करता बलवंत कारी सिवंत सूरा चतर दिशा बिखम थान बसंत ऊंच न समरंत मरणं कदांच होवंत आग्या भगवान पुरख नानक कीटी सास्या करखते शब्दंग रतंग हितंग माया कीर्तन कली कर्म कृतवा मिटंत तत्रागत परम मोहं भगवान रमणं सर्वत्र थान्यं दृष्टत्वं अमोग दर्शनं बसंत साध रसना हर हर हर हरे नानक प्रयंग जाप जपना कटंत रूपं कटंत दीपं कटंत रव सस्यर नक्षत्र गगनं कटंत बसदा गिर तर से खंडं कटंत ललना सुद प्रात हीतं कटंत कनक मानक माया स्वरूपं नह कटंत केवल गोपाल अच्युत
असरंग नानक साध जन। नह बिलंब धर्मं बिलंब पापं दृढ़ंत नामं तजंत लोभं शरण संतं किल बिखनासं प्रावतं धर्म लखन। नानक जे सो प्रसन्न माधव मृत मोहं अल्प बुद्धियं रचंत बनता विनोद साहं जोबन बहक्रम कनक कुंडल बचित्र मंदर सोभंत बस्त्रा इत्यंत माया व्यापतं। हे अचित शरण संत नानक ओ भगवान ए नमः। जन्मं ता मरणं हरखं ता सोगं भोगं ता रोगं ऊचं ता नीचं नाना सोमूचं राजं ता मानं अभमानं ता हीनं। परवृत मार्गं वर्तन्त विनाशनं गोविंद भजन साध संगेण अस्त्रं नानक भगवंत भजनासनं। कृपं ता हरियं मत तत् ज्ञानं विकसीद बुद्धा कुशल थानं बस्यंत रखियं त्याग मानं बस्यंत रखियं त्याग मानं शीतलंत हृदयं दृढ़ संत ज्ञानं। अरहंत जन्मं हर दर्शलीना बाजंत नानक शब्द बीणा कहंत बेदा गुणंत गुणिया सुनंत बाला बहुविध प्रकारा दृढ़ंत सुविद्या हर हर कृपाला नाम दान जा चंत नानक दैन हर गुर गोपाला। नह चिंता मात पित प्रात नह चिंता कश लोक कै नह चिंता बंता सुतमीत प्रवृत माया संबंधन है दयाल एक भगवान पुरख है नानक सर्व जी प्रतपालक है। अनित वितंग अनित चितंग अनित आसा बहुविध प्रकारं अनित हेतं अहं बंदं परम माया मलनं बेकारं। फिरंत जोन अनेक जठरागन नै समरंत मलीन बुद्धियं। हे गोविंद करत माया नानक पत ते उदाहरण साध संग मैं। गिरंत गिर पतत पातालं जलंत दे दीप बै स्वंतर बहंता गह तोयं तरंगं दुखंत ग्रह चिंता जन्मं ता मरण अनक साधन ना सिद्धिया ते नानक। अस्तंबं अस्तंबं अस्तंबं शब्द साध स्वजन कोर दुखियं अनकहत्यं जन्म दारिद्रं महाबिख्यादं मिटंत सगल समरंत हर नाम नानक। जैसे पावक काष्ट पस्मं करोत अंधकार सिमृत प्रकाशं गुण रमंत अग खंडन हरिद बसंत पै पीत दूत कर्म करत महा निर्मल जन्म मरण रहंत स्रोता सुख समूह अमोघ दर्शन है शरण जोगं संत प्रे नानक सो भगवान खेमं करोत। पाशं करोत अग्रणी वै निरासं आस पूर्ण निर्तन पयं तन मंत रोगियं रोग खंडन भगत्यं भगत दानं राम नाम गुण कीर्तन पार ब्रह्म पुरख दा तार नानक गुर सेवा किंग ना लभ्या ते। अतरंग तरंग तारण निरतनंग तन नाम नर हर अनाथ नाथ गोविंद बलहीन बल केशव सर्वभू दयाल अच्युत दीन बांधवदा मोदर सर्वग पूर्ण पुरख भगवान भगत वच्छल करनामय। घट घट बसंत बास देव है पार ब्रह्म परमेश्वर है जाचंत नानक कृपाल प्रसादं। नह बिसरंत नह बिसरंत नारायण है नह समरथं नह सेवकं नह प्रीत परम परखोत्तमं तव प्रसाद सिमरते नामं। नानक कृपाल हर हर गुरं। परण पोखण करंत जिया विश्राम शादन देवंत दानं सृजंत रतन जन्म चतर चेतन वर्तंत सुख आनंद प्रसाद सिमरंत नानक हर हर हरे अनित रचना निर्मोहते।
दानंग पराबूर बेण पुचंते मही पते विपरीत बुद्धियंग मारत लोकै नानक चिरंकाल दुख भोगते। बिरथा अनुग्रह गोविंद जस सिमरन।

अमृत नाम नारायण नानक पीवतंग संतना तृपते। सहनशील संतंग सम्मित्रस दुर्जन नानक भोजन अनक प्रकारेण निंदक आवद होए उपतिष्ठते। तिरस्कार नह पवंत मान भंगन शोभाहीन नह पवंत नह पोहंत संसार दुखन। गोविंद नाम जपंत मिल साध संग नानक से प्राणी सुख बसन। सैना साध समूह सूरज तंग सन्ना हम तन्यमृता आवद गुण गोविंद रमणंग ओट गुर शब्द कर चरमण। आरूढ़ ते अश्वरथ नाग बुजंते प्रमार गै विचरते निर्भयंग सत्र सैना तायंते गोपाल कीर्तन। जित ते विश्व संसार नानक वस्यंग क्रोध पै तस्कर। मृग तृष्णा गंधर्व नगरंग द्रुम छाया रच दुर्मत ततः कुटाम्ब मोह मिथ्या समरंत नानक राम राम नाम। नच विद्या निदान निगमंग नच गुणग नाम कीर्तन। नच राग रतन कंठंग नह चंचल चतर चतर। भाग उद्यम लभद्यंग माया नानक सा संग खल पंडित। कंठ रमणी राम राम माला हस्त ऊच प्रेम तारणी जी पणिजो उत्तम सलोक उदरनंग नै नंदनी। गुरमंत्र ही नस जो प्राणी त्रिगंत जन्म प्रष्टन। कुकरै सुकरै गर्भ दै काकै सर्पनै तुल खलै चरणार बिंद भजनंग हृदयंग नाम धारणै। कीर्तनंग साध संगे नानक नह दृष्टांत जमदूतनै। नच दुर्लभंग धनंग रूपंग नच दुर्लभंग स्वर्ग राजनै। नच दुर्लभंग भोजनंग बिंजनंग नच दुर्लभंग स्वच्छ अंबरै। नच दुर्लभंग सुत मित्र प्रात बांधव नच दुर्लभंग बंता बिलासै। नच दुर्लभंग विद्या प्रवीणंग नच दुर्लभंग चतर चंचल। दुर्लभंग एक भगवान नामै नानक लभद्यंग सा संग कृपा प्रभंग। जत कतै ततै दृष्टंग स्वर्ग मर्त पयाल लोकै। सर्वत्र रमणंग गोविंद नानक लेप शेप ना लिप्या ते। बिखिया पयंत अमृतंग दृष्टा सखा स्वजन। दुखंग पयंत सुखयंग पै पी पंत निर्भय। थान बिहून विश्राम नामंग नानक कृपाल हर हर गुरै। सर्वशील ममंगशीलंग सर्व पावन मम पावन। सर्व कर्तव ममंग कर्ता नानक ले।

परम प्यान उद्यान रमणं महाविकट असाध रोगण वैद्यंकार परम परमेश्वर आराध नानक हर हर हरे। हे प्राणनाथ गोविंद कृपा निधान जगत गुरो, हे संसार ताप हरण करना मैं सब दुख हरो, हे शरण योग दयाल दीना नाथ मया करो, शरीर स्वस्थ खीण समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधव, चरण कमल सरणं रमणं गोपाल कीर्तन साध संगेन तरणं, नानक महासागर पैद उत्तर, सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्मं, हस्त काया रखिया परमेश्वर, आत्म रखिया गोपाल स्वामी, तन चरण रखिया जगदीश्वर, सर्व रखिया गुरदयाल पै दुख विनाशन, भगत वचला नाथ नाथे शरण नानक पुरखा चुत, जैन कला तारियो आकाशं बैसंतरं काष्ट बेष्टं, जैन कला स सूर नक्षत्र ज्योतियं सासं शरीर धारणं, जैन कला मात गर्भ प्रतिपालं नैश जंत जठर रोगण, तेन कला अस्थंबं सरोवरं नानक नैश जंत तरंग तोयण, गुसाई गृष्ट रूपेण सिमरणं सर्वत्र जीवन, लब्धं संत संगेण नानक स्वच्छ मार्ग हर भक्तन, मस्कं पगनंत सैलं कर्दमं तरंत पपील कै, सागरं लंघंत पिंगं तम प्रगास अंध कै, साध संगेण स्मरंत गोविंद शरण नानक हर हर हरे। तिलकहीणं जथा विपरा अमरहीणं जथा राजन, आवदहीणं जथा सूरा नानक धर्महीणं तथा वैष्णव, ना शंखं ना चक्रं ना गदा ना सियामं, आश्चर्य रूपं अरहंत जन्मं नेत नेत कथंत वेदा ऊंच मूचा पार गोविंद, बसंत साध हृदयं अचत बुझंत नानक वडभागी है, उद्यान बसनं संसारं संबंधी स्वान स्याल खरै, बिखम स्थान मन मोह मदरं महा असाध पंच तस्कर, हीत मोह पै परम परमणं अहू फांस दीखण कठन, पावक तो असाध कोरं अगम तीर न लंगन, पज साध संग गोपाल नानक हर चरण सरण उदरण कृपा, कृपा करंत गोविंद गोपाल सगल रोग खंडन, साध संगेन गुण रमत नानक सरण पूर्ण परमेश्वर, श्यामलं मदर मानुखयं हृदयं पूं वैरण, निवंत होवंत मिथ्या चेतनं स्वंत स्वजन, अचेत मूडा ना जानंत कटंत सासा नित प्रत्यक्ष, जंत महासुंदरी काया काल कन्या ग्रास्ते, हरिचंत पुरख कुटंब लीला अनित आसा विख्या बिनोद, परमंत परमंत जन्म हार्यो शरण नानक करनामय, हे जेहबे हे रसगे मदर प्रिया त्वयं सत हतं परम बादं, अवर्त एथ सुध अक्षरण, गोविंद दामोदर माधवे गर्भंत नारी मदोन मतं, बलवंत बलात्कारण चरण कमल नह पजंत तरण समान त्रिग जन्मन, हे पपील का ग्रष्टे गोविंद सिमरन तोयं धने नानक अनक बार नमो नम, त्रिणंगता मेरंग सहकंता हरियं बूडंगता तरियं ऊनंगता परियं, अंधकार कोड सूर ओजारं बिनवंत नानक हर गुर दयारं, ब्रह्मण संग उदरणं ब्रह्म कर्म जे पूर्ण, आत्मरतं संसार गहं ते नर नानक ने फल, पर दर्भ हिरणं बहु विघ्न करणं उचरणं सर्वजी कै, लाओ लई तृष्णा अतिप्त मन माए कर्म करत सासु करै, मते समेव चरणं उदरणं पै दुतरै, अनेक पात कहरणं नानक साध संगम ना संशय। महला पंजवां गाथा एको अंकार, सतगुर प्रसाद कर्पूर पोहप सुगंधा परस मानुख देहं मलीणं, मज्जा रुद्र दुर्गंधा नानक अथगर।

प्रीत प्रेम तन खच रहया बीच नाराई होत चरण कमल मन बेदियो बुजन सुरत संजोग। सागर मेर उद्यान बन नवखंड बसदा परम मूसन प्रेम परम कै गनो एक कर करम। मूसन मस्कर प्रेम की रही जो अंबर शाए बिंदे बांदे कमल में पवर रहे लपटाए। जाप तप संजम हरख सुख मान महत्यार गर्भ मूसन निमखक प्रेम पर वार वार देओ सर्ब। मूसन मर्म न जान नहीं मर्त हिरत संसार प्रेम परम न बेदेओ उर्ज्यो मिथ व्यवहार। कब दब जब जारी है बिशरत प्रेम बेहाल मूसन तब ही मूसी है बिसरत पुरख दयाल। जा को प्रेम सुआओ है चरण चितव मन माहे नानक बिरही ब्रह्म के आन न कतहू जाहे। लख काटी ऊंचो कनो चंचल चीत बेहाल नीच कीच निमृत कनी करनी कमल जमाल। कमल नैन अंजन श्याम चंद्र बदन चित चार मूसन मगन मरम स्यों खंड खंड कर हार। मगन पयो प्रे प्रेम स्यों सूद ना सिमरत अंग प्रगट पयो सब लो मैं नानक अदम पतंग। सलोक भगत कबीर जीओ के एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कबीर मेरी सिमरनी रसना उपर राम आज जुगादी सगल भगत ताको सुख विश्राम। कबीर मेरी जात कहो सबको हसने हार बलिहारी इस जात कहो जे जप्यो सृजनहार। कबीर डगमग क्या करे कहां डुलावे जियो सर्व सुख को नायको राम नाम रस पियो। कबीर कंचन के कुंडल बने ऊपर लाल जड़ाओ दिसे दांदे कान ज्यो जिनमन नाही नाओ। कबीर ऐसा एक याद जो जीवत मृतक होए निरपय होए कै गुण रवे जत पेखों तत सोए। कबीर जा दिन हो मुआ पाछे पया आनंद मोहे मिलियो प्रभ अपना संगी भजै गोबिंद। कबीर सब ते हम बुरे हम तज भलो सब कोए जिन ऐसा कर बुझिया मीत हमारा सोए। कबीर आई मुझे पै अनक करे कर पेस हम राखे गुरे अपने उनकीनो आदेश। कबीर सोई मारी है जे मुए सुख होए पलो पलो सब को कह बुरो न माने कोए। कबीर राती हो मैं कारिया कारे उबे जंत लह फाहे उठतावते से जान मारे भगवंत। कबीर चंदन का बिरवा पला बेड़े उठाग पलास ओए पी चंदन होए रहे बसे जो चंदन पास। कबीर बांस बढ़ाई बूढ़िया इओ मत डूबो कोए चंदन कै निकटे बसे बांस सुगंध ना होए। कबीर दीन गवाया दुनी से ओ दुनी ना चली साथ पाए कुहाड़ा मारिया गाफले अपने हाथ। कबीर जय जय हों फिरे ओ कौतकठा उठाए एक राम स्नेही बहरा उजर मेरे पाए। कबीर संतन की चुंगिया पली पाठक सती गाओ आग लगो तेह तौल हार जे नाही हर को नाओ। कबीर संत मुए क्या रोई है जो अपने ग्रह जाए रोबो सागत बापरे जो हट है हट बेकाए। कबीर सागत ऐसा है जैसी लक्षण की खान कोने बैठे खाई है प्रगट होए निदान। कबीर माया डोलनी पवन वह हिवतार जिन बिलोया तिन खाया अवर बिलो बनहार। कबीर माया चोरटी मुसमुस लावे

करते हुए सो होए। कबीर बैसनो की कुकर भली सागत की बुरी माए, ओ नित सुने हर नाम जस ओ पाप बिसाहन जाए। कबीर हरना दुबला एहो हरियारा ताल, लाख अहेरी एक जियो केता बंचो काल। कबीर गंगा तीर जो कर करे पीवे निर्मल नीर, बिन हर भगत ना मुक्त होए इयों कह रमे कबीर। कबीर मन निर्मल

राम स्नेही तो मिले दोनों वर्ण गवाए। कबीर हर दीपी रतन हर है चून चहन ना रहाए। बलिहारी यह प्रीत कहो जे जात वर्ण कुल जाए। कबीर मुक्त दो

कबीर माए मुंडो ते गुरु की जाते परम ना जाए, आप डुबे चौबे मैं चेले दिए बहाए। कबीर जेते पाप किए राखे तले दुराए, प्रगट पै निदान सब जा पूछे धर्म राए। कबीर हर का सिमरन छाड़ के पाल्यो बहुत कुटंब, तंदा करता रह गया भाई रहा ना बंद। कबीर हर का सिमरन छाड़ के रात जगावन जाए, सरपन हो कै उतरे जाए अपने खाए। कबीर हर का सिमरन छाड़ के अहोई राखे नार, गधी हो कै उतरे पारस है मन चार। कबीर चतराई अत कनी हर जप हिरदय माहे, सूरी उपर खेलना ग्रहता ठाहर नाहे। कबीर सोई मुख तन है जा मुकैये राम, देही किसकी बापरी पवित्र होए गो ग्राम। कबीर सोई कुल पली जा कुल हर को दास, जे कुल दास न उपजै सो कुल ढाक पलास। कबीर है गए बाहन सगन कानो, लाख तजा फहराए, या सुख ते पिखिया पली जो हर सिमरत दिन जाए। कबीर सब जग हों फिरयो मांदल कंध चढ़ाए, कोरी कोई काहू को नहीं सब देखी ठोक बजाए। मार्ग मोती बीथरे अंधा निकस्यो आए, जोत बिना जगदीश की जगतो लंगे जाए। बूढ़ा बंस कबीर का उपजो पूत कमाल, हर का सिमरन छाड़ के कर ले आया माल। कबीर साधु को मिलने जाइए साथ ना लीजे कोए, पाछे पाव ना दीजिए आगे होए सो होए। कबीर जग बांध्यो जह जेवरी, तेह मत बंधो कबीर, जह आटा लोन ज्यो सोन समान शरीर। कबीर हंस उड्यो तन गाड्यो, सो जाई सैनाहा, अज हूं जियो ना छोड़ई रंकाई नैनाहा। कबीर नैन निहारो तुझ कहो, श्रवण सुनो तो नाओ, बैर उचरो तो नाम जी, चरण कमल रिद ठाओ। कबीर सुर्ग नर्ग ते मैं रहो, सतगुर के प्रसाद, चरण कमल की मौज में रहो अंत अर्याद। कबीर चरण कमल की मौज को कह कैसे उन्मान, कह बे को शोभा नहीं देखा ही परवान। कबीर देख कह कह कहो कहे ना को पतियाए, हर जैसा तैसा उही रहो हरख गुन गाए। कबीर चुगै चितारे पी चुगै चुग चुग चितारे, जैसे बचरे कुंज मन माया ममतारे। कबीर अंबर कन हर छाया बरख भरे सरताल, चातरक जो तरसत रह तिनको कौन हवाल। कबीर चकी जो निस बिछरे आए मिले प्रभात, जो नर बिछरे राम स्यो ना दिन मिले ना रात। कबीर रह नायर बेशोरिया रहोरे संख मजूर, देवल देवल ताहड़ी देस उगवत सूर। कबीर सूता क्या करे जाग रोए पै दुख, जाका बासा गोर मैं सो क्यों सो वै सुख। कबीर सूता क्या कर है उठ के ना जपै मुरार, एक दिन सोमन होए गो लांबे गोट पसार। कबीर सूता क्या करे बैठा रहो अर जाग, जाके संगते बिछरा ताही के संग लाग। कबीर संत की गल ना छोड़िए मार्ग लागा जाओ, पेखत ही पोनीत होए पेट जपिए नाओ। कबीर साक्त संग ना कीजिए दूर जाइए भाग, बासन कारो परसिए तौ कछ लागे दाग। कबीरा राम ना चेतेओ जरा पहुंचो आए, लागी मंदिर द्वार ते आप क्या काढ़िया जाए। कबीर कारण सो पयो जो कि नो करतार, तिस बिन दूसर को नहीं एक सृजनहार। कबीर फल लागे फलन पाकन लागे आंब, जाय पहुंचे खसम को जो बीच ना खाही कांब। कबीर ठाकर पूजे मोल ले मानहट तीर्थ जाहे, देखा देखी स्वांग तार पुले पटका खाहे। कबीर पाहन परमेश्वर किया पूजे सब संसार, इस परवासे जो रहे बूढ़े काली तार।
ਕਬੀਰ ਕਾਗਦ ਕੀ ਓਬਰੀ, ਮਸਕੇ ਕਰਮ ਕਪਾਟ, ਪਾਹਨ ਬੋਰੀ ਪਿਰਥਮੀ, ਪੰਡਿਤ ਪਾੜੀ ਬਾਟ। ਕਬੀਰ ਕਾਲ ਕਰੰਤਾ ਅਬ ਹੈ ਕਰ, ਅਬ ਕਰਤਾ ਸੋਏ ਤਾਲ, ਪਾਛੈ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਜਬ ਸਿਰ ਪਰ ਆਵੈ ਕਾਲ। ਕਬੀਰ ਐਸਾ ਜਨਤਿਕ ਦੇਖਿਆ, ਜੈਸੀ ਧੋਈ ਲਾਖ, ਦਿਸੈ ਚੰਚਲ ਬਹੁਗੁਣਾ, ਮਤਹੀਨਾ ਨਾ ਪਾਕ। ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧ ਕਹੋ, ਜਮ ਨਾ ਕਰੈ ਤਿਸਕਾਰ, ਜਿਨ ਇਹੋ ਜਮੂਆ ਸਿਰਜਿਆ, ਸੋ ਜਪਿਆ ਪਰਵਦਗਾਰ। ਕਬੀਰ ਕਸਤੂਰੀ ਪਇਆ, ਭਵਰ ਭਏ ਸਬਦਾਸ, ਜਿਉ ਜਿਉ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕੀ, ਤਿਉ ਤਿਉ ਰਾਮ ਨਿਵਾਸ। ਕਬੀਰ ਗਹਿ ਗਜ ਪਰਿਓ ਕੁਟੰਬ ਕੈ, ਕਾਂਠੈ ਰਹਿ ਗਿਓ ਰਾਮ, ਆਏ ਪਰੇ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕੇ, ਵਿਚੈ ਤੂੰ ਮਾ ਤਾਮ। ਕਬੀਰ ਸਾਗ ਤੇ ਸੂਕਰ ਭਲਾ, ਰਾਖੈ ਅੱਛਾ ਗਾਓ, ਉਹ ਸਾਗਤ ਬੱਪਰਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਲਹਿ ਨਾਓ। ਕਬੀਰ ਕੌਡੀ ਕੌਡੀ ਜੋਰ ਕੈ, ਜੋਰੇ ਲੱਖ ਕਰੋਰ, ਚਲਤੀ ਬਾਰ ਨਾ ਕਛ ਮਿਲਿਓ, ਲਈ ਲੰਗੋਟੀ ਤੋਰ। ਕਬੀਰ ਬੈਸਰੋਂ ਹੁਆ ਤਾਂ ਕਿਆ ਪਿਆ, ਮਾਲਾ ਮੇਲੀ ਚਾਰ, ਬਾਹਰ ਕੰਚਨ ਬਾਰਹਾ, ਪਿੱਤਰ ਭਰੀ ਪੰਗਾਰ। ਕਬੀਰ ਰੋਣਾ ਹੋਏ ਰਹੁ ਬਾਟਕਾ, ਤਜ ਮਨ ਕਾ ਅਭਮਾਨ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਦਾਸ ਹੋਏ ਤਾਹੇ ਮਿਲੈ ਭਗਵਾਨ। ਕਬੀਰ ਰੋੜਾ ਹੁਆ।

मुख ते राम संभाल, हाथ पाओ कर काम सब, चीत निरंजन नाल। महला पंजवां, कबीरा हमरा को नहीं, हम किस हुके नाहे, जिन एहो रचन रचाया तिसी मैं समाहे। कबीर की चिड़ियाटा गिर परया, किशु ना आयो हाथ, पीस्त पीस्त चाबिया सोई निभया साथ। कबीर मन जाने सब बात, जानत ही अवगन करे काहे की कुसलात। हाथ दीप कुए पर है, कबीर लागी प्री सुजान, स्यों बरजै लो गया जान, ता स्यों टूटी क्यों बने जाके जी प्राण। कबीर कोठे मंडप हेत कर, काहे मरो सवार, कार्ज साढ़े तीन हाथ, कहीं ता पौने चार। कबीर जो मैं चितवो ना करे, क्या मेरे चितवे होए, अपना चितव्या हर करे, जो मेरे चेतना होए। महला तीजा, चिंता पे आप कराए सी है, चिंत पे आपे दे, नानक सो सा लाही है, जे सब ना सार करे। महला पंजवा, कबीर राम ना चेते, ओ फिर या लालच माहे, पाप करंता मर गया, औध पुनी खिन माहे। कबीर काया काची कारवी, केवल काची तात, साबत रखे ता राम पाज, नाहे ता बिरठी बात। कबीर केसो केसो कुकिया, ना सोइए आसार, रात दिवस के कुकने, कबहू के सुने पुकार। कबीर काया कजली बन पया, मन कुंचर मैं मंत, अंकस ज्ञान रतन है, खेवट बिरला संत। कबीर राम रतन मुख कोथरी, पारख आगे खोल, कोई आए मिले गो गाह की, ले गो में गो मोल। कबीर राम नाम जान्यो नहीं, पाल्यो कटक कुटंब, तंदे ही मैं मर गयो, बाहर पई ना बंब। कबीर आखी केरे माटके, पल पल गई बिहाए, मन जंजाल ना छोड़ी, जम दिया दमामा आए। कबीर तारवर रूपी राम है, फल रूपी बैराग, छाया रूपी साध है, जिन तजया बाद विवाद। कबीर ऐसा बीज बोए, बारह मास फलंत, शीतल छाया गहर फल, पंखी केल करंत। कबीर दाता तरवर दया फल, उपकारी जीवंत, पंखी चले दिसावरी, बिरखा सुफल फलंत। कबीर साधु संग प्राप्ति, लिखिया होए ललाट, मुक्त पदार्थ पाई है, ठाक ना या कटकाट। कबीर एक कड़ी आदि करी, आदि हूं ते आद, भगतन सेती गोष्टे, जो कीने सो लाभ। कबीर भांग माछली सुरा पान, जो जो प्राणी खाहे, तीर्थ व्रत नेम किए, ते सबैर सातल जाहे। नीचे लोहिन कर रहो, ले साजन कट माहे, सब रस खेलो पीसो, किसी लिखावो नाहे। आठ जाम चौसठ करी, तो निरखत रह जियो, नीचे लोहन क्यों करो, सब कर देखो पियो। सुन सखी पी मह जियो बसे, जी में बसे के पियो, जियो पियो बूझो नहीं, घट में जियो के पियो। कबीर बामन गुरु है जगत का, भगतन का गुर नाहे, अर्ज उर्ज के पचमुआ, चारो बेदो माहे। हर है खांड रेत में बिखरी, हाथी चुनी ना जाए, कह कबीर गुर पली बुझाई, कीटी होए कह खाए। कबीर जो तुहे तो साध ब्रह्म की, शीस काट कर गोए, खेलत खेलत हाल कर, जो किश होए ता होए। कबीर जो तुहे तो साध ब्रह्म की, पाके से ती खेल, काची सरसों पेल कै, ना खल पही ना तेल। ढूंढत डोले अंध गत, अर चिंत नाही संत, कह नामा क्यों पाई है, बिन भगतो भगवंत। हर सो हीरा छाड़ कै, करे आन की आस, ते नर दोजग जाहेंगे, सत पाख है रविदास। कबीर जो ग्रहो करे ता धर्म कर,

एको ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सह पंगुर प्रसाद सवैये श्री मुखबाक महला पंजवां आदि पुरख करतार करण करण सब आपे सर्ब रहो भरपूर सगल कट रहो ब्यापे व्याप्त देखिए जगत जाने कौन तेरी गत सर्ब की रखिया करे आपे हर पत अविनाशी अब

विचार, जगत पिता है सर्व प्राण को आधार, जन नानक भगत दार तुल ब्रह्म संसार, एक जी क्या बखाना, हां के बल बल बल बल सद बलिहार, अमृत प्रवाह सर अतुल भंडार पर, परै ही ते परै अपरे अपार पर, आपनो पावन कर मंत्र ना दूसरो तार, ओपत पर लो एक है निमख तो कर, आन नाही संसार उजियारो निर्मर, कोट प्राप्त जाहे नाम लिए हर हर, जन नानक भगत दार तुल ब्रह्म समसर, एक जी क्या बखाना, हां के बल बल बल बल सद बलिहार, सगल पवन तारे एक थे किए बिस्थारे, पूर रहो सर मैं आप है निरारे, हार गुण नाही अंत पारे जी जंत सब थारे, सगल को दाता एक है अलख मुरारे, आप ही तारण तारे कुदरत है देखारे, वर्ण चिहन नाही मुख नाम सारे, जन नानक भगत दार तुल ब्रह्म समसर, एक जी क्या बखाना, हां के बल बल बल बल सद बलिहार, सर्व गुण निधानं कीमत ना ज्ञानं ध्यानं, ऊंचे ते ऊंचो जानी जय।

करै ते नर सह सह समप ते नर दुलीचे बह ते नर उथप बिथप सुख लह ते नर संसार में अपह पट रिप मद ते सक्यथ ते नर जाल पपण गुर अमरदास सो प्रसन्न जेहे तै पढ़ियो एक मन धरियो एक कर एक पछाण्यो नैन बैन मोहे एक एक दो ठाए ना जाण्यो सुपन एक प्रतख एक एक समय लीणो तीस एक अर पंज सिद्ध पैतीस ना खीणो एको जे लाख लखो अलख है एक एक कर वरण्यो गुरे अमरदास जल पणे तू एक लोड़े एक मन्यो जे मत गही जय देव जे मत नामे सम्मानी जे मत त्रिलोचन चित भगत कभी रह जानी रुक मांगत करतूत राम जंपो नित पाई अमरीक प्रहलाद शरण गोविंद गत पाई तै लोभ क्रोध तृष्णा तजी सुमत जल जानी जुगत गुरे अमरदास निज भगत है देख दर्स पावो मुक्त गुर अमरदास परसिय पहुं पातक बेनासै गुरे अमरदास परसिय से साधक आसासै गुरे अमरदास परसिय ध्यान लइए पौ मुके गुर अमरदास परसिय अपौ लब्बै गौ चुके एक बिन दुगण जो तौ रह जा सुमंत्र मानवै लह जाल पा पदार्थ इतड़े गुर अमरदास डिठै मिलै सच नाम करतार सो दृढ़ नानक संग रहो ताते अंगद लहना प्रगट तास चरण लिव रहो तित कुल गुर अमरदास आसा निवास तास गुण कमण वखाणो जो गुण अलाख्या गम तिने गुण अंत न जाणो बोए थो विधातै निर्मयो सब संगत कुल उदरण गुर अमरदास कीर्त कहै त्राहे त्राहे तो पासरण आप नारायण कलातार जग में परवरयो निरंकार आकार ज्योत जग मंडल करयो जय कहत है परपूर सब दीपक दीपायो जे सिखै संग्रहयो तत हर चरण में लायो नानक कुल निम्मल अवतरयो अंगद लहणे संग हो गुर अमरदास तारण तरण जन्म जन्म पासरण तो जप तप सत संतोख पिख दर्शन गुर सिख सरण परै ते उबरै छोड़ जमपुर की लिखै भगत पाए भरपूर हृदय उचरै करतारै गुर गौहर दरियाओ पलक डुबंत तारै नानक कुल निम्मल अवतरयो गुण करतारै उचरै गुर अमरदास जिन सेवयो तिन दुख दरिद्र पर हर परै चित चितवो अरदास कहो पर कह पह ना सको सर्व चिंत तुझ पास साध संगत हौ तको तेरे हुकुम पवै निशान तव करो साहिब की सेवा जब गुर देखै शुभ दिष्ट नाम करता मुख मेवा अगम अलख कारण पुरख जो फरमावै सो कहो गुर अमरदास कारण करन जिव तू रखै तिव रहो पिखे के गुर ज्ञान अर ध्यान तत् स्यों तत् मिलावै सच सच जानिए एक चित्तै लिवलावै काम क्रोध वस करै पवन उडंत ना तहावै निरंकार कै वसै देश हुक्म बुझ विचार पावै कल माहे रूप करता पुरख सो जाने जिन किश कियो गुर मिलियो सोए पिखा कहै।

बरस एक हों फिर किने नौ पर चौ लायो, कहते है कहती सुनी रहत को खुशी ना आयो। हर नाम छोड़ दूजे लगे तिन के गुणाओ क्या कहो, गुरदय मिलायो पिखिया जिव तू रखे तिव रहो। पहर समाज सुना हो ज्ञान है आसन चढ़े आओ, धर्म तनख कर गहे हो भगत सीले सर लड़े आओ। पह निरपो हरा टल मानो शब्द गुर ने जा गड्डे आओ, काम क्रोध लो मोह अपत पंच दूत बेखंडे आओ। पलो पुहाल तेजो तना निरपद नाथ नानक बर, गुर अमरदास सल पण तै दल जितो इव युद्ध कर। कन हर बूंद बसोरो मावल कुसुम बसंत ग्रंथ न आवै, रव संस्करण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावै। रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के कब जन पल उन्हें जो गावै, पल्ले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बने आवै। सवैये महल्ले चौथे के एक ओंकार सतगुर प्रसाद, एक मन पुरख निरंजन त्यावो गुर प्रसाद हर गुण सदगावो। गुण गावत मन होए बिगासा सतगुर पूर्ज ने की आसा, सतगुर से परम पद पायो अब नासी अब गाते आयो। तिस भेटे दर दरना चंपै कल सहार तास गुण जंपै, जंपो गुण बिमल सुजन जन के रे अमे नाम जा को फुरिया। इन सतगुर सेव शब्द रस पाया नाम निरंजन और तरिया, हर नाम रस गोविंद गुण गाहक चाहक तत् समत सरे। कव कल ठकर हरदास तने गुर रामदास सरा पर परे, छुटत परवा अमे अमरा पद अमृत सरोवर सद भरिया। ते पीवे संत करै मन मज्जन पुबजनो सेवा करिया, तिन पहु निवार अन पै पादीना शब्द मात्र ते उदर तरे। कव कल ठकर हरदास तने गुर रामदास सरा पर परे, सतगुर मत गूढ़ बिमल सत संगत आत्म रंग चलूल पया। जाग्या मन कवल सहज प्रकाशया अपै निरंजन करै लहा, सतगुर दयाल हर नाम दृढ़ाया तिस प्रसाद वस पंच करे। कव कल ठकर हरदास तने गुर रामदास सरा पर परे, अन पौ उन्मान अकल लागी पारस पेटिया सहज करे। सतगुर प्रसाद परम पद पाया भगत पाए भंडार परे, मेटिया जन्मात मरण पौ भागा चित लागा संतोख सरे। कव कल ठकर हरदास तने गुर रामदास सरा पर परे, अपर परे पायो अपार हृदय अंतर तारयो। दुख पंजन आत्म प्रबोध मन तत् विचारयो, सदा चाहे हर पाए प्रेम रस आपे जाने। सतगुर कै प्रसाद सहज से तीरंग माने, नानक प्रसाद अंगद समात गुर अमर अमर वरतायो। गुर रामदास कलुचरै तै अटल अमर पद पायो, संतोख सरोवर बसै अमे रस रसन प्रकाशै। मिलत सांत उपजै दुरत दूरंतर नासै, सुख सागर पायो दिनत हर मग ना हुटै। संजम सत संतोख सील सनहो फुटै, सतगुर प्रमाण बिद नै सिरयो जग जस तूर बजायो। गुर रामदास कलुचरै तै अपै अमर पद पायो, जग जितो सतगुर प्रमाण मन एक त्यायो। तन तन सतगुर अमरदास जिन नाम दृढ़ायो, नवनिद नाम निधान रिद्ध सिद्ध ता की दासी। सहज सरोवर मिलियो पुरख भेटियो अबनासी, आदले भगत जित लग तरे सो गुर नाम दृढ़ायो। गुर रामदास कलुचरै तै हर प्रेम पदार्थ पायो, प्रेम भगत प्रवाह प्रीत पुबली ना हुटै। सतगुर शब्द अथाह अमे तारा रस गुटै, मत माता संतोख पिता सरसै समायो। आजोनी संपावयो जगत गुर बचन तरायो, आप गात्या गोचर अपर पर मन गुर शब्द वसायो। गुर रामदास कुलुचरै तै जगतो धारण पायो,
जगतो धार नाम निदान भगत पवतारण अमृत बूंद हर नाम बिसकी बिखै निवारण साहित रोवर फलो ज्ञान अमृत फल लागे गुरप्रसाद पाई है तन ते जनवट पागे ते मुक्ते पाए सतगुर शब्द मन गुर परचा पायो गुर रामदास कलुचर तै शब्द निशान मजायो से सदा सह शावान संतोख सराय चाओ सदा सीर सन्ना हो सो है गुर शब्द समाचरियो नाम टेक संगाद बो है आजोनियो पालिया माल सदगुर संग निवास गुर रामदास कलुचर तो सह सरोवर वास गुर जिन कौ सो प्रसन्न नाम हरदय निवास है जिन कौ गुर सो प्रसन्न दुरत दूर अंतर नास है गुर जिन कौ सो प्रसन्न मान अभमान निवार है जिन कौ गुर सो प्रसन्न शब्द लग पव जल तार है परचो प्रमाण गुर पायो तिन सके अथो जन्म जग श्री गुरु शरण भज कल कब भुगत मुक्त सब गुरु लग सतगुर खेमा ताणिया जुग जूत समाणे अनपौ नेजा नाम टेक जित भगत्या गाणे गुर नानक अंगद अमर भगत हर संग समाणे एहो राज जोग गुर रामदास तुमहू रस जाने जनक सोए जिन जानिया उन मन रथ तरिया सत संतोख समाचरे अपरा सर भरिया अकथ कथा अमरापुरी जिस दे सो पावै एहो जनक राज गुर रामदास तुझ ही बने आवै सतगुर नाम एक लिव मन जपै दृढ़ तिन जन दुख पाप कहो कत होवै जियो तारन तरन खिन मात्र जा को दृष्ट तार है शब्द रिद विचार है काम क्रोध खोवै जियो जियन सवन दाता अगम ज्ञान बिख्याता एहन इस ध्यान तावै पलक ना सोवै जियो जा को देखत दृद्र जावै नाम सो निदान पावै गुरमुख ज्ञान दुरमत मैल धोवै जियो सतगुर नाम एक लिव मन जपै दृढ़ तिन जन दुख पाप कहो कत होवै जियो धर्म कर्म पूरै सतगुर पाई है जा की सेवा सिद्ध साध मुन जन सुर नर जाचै शब्द सार एक लिव लाई है फुन जानै को तेरा अपार निरपौ निरंकार अकथ कथन हार तुझे बुझाई है परम पूले संसार छुट्टो जूनी संगार जम को ना दंड काल गुरमत त्याई है मन प्राणी मुग्ध विचार अहनिस जप धर्म करम पूरे सतगुर पाई है हम बल बल जाऊं सतगुर साचे नाम पर कवन उपमा देओ कवन सेवा सिरेओ एक मुख रसना रसो जुग जोर कर फुन मन बच कर्म जान अंत दूजा नामान नाम सोआ पारसार दिनो गुर रिद तार नल कव पारस परस कच कंचना नल कव पारस परस कच कंचना हुए चंदना सुबास जास सिमरत अन तार जाके देखत दुआरे काम क्रोध ही निवारे जी हम बल बल जाऊं सतगुर साचे नाम पर राज जोग तख्त दियन गुर रामदास प्रथमे नानक चंद जगत भयो आनंद तारन मनुख जन कियो प्रगास गुर अंगद दियो निदान अकथ कथा ज्ञान पंचभूत बस कीने जमत ना त्रास गुर अमर गुरु श्री सत कल युग राखी पत अग्न देखत गत चरण कवल जास सब विद्मान्यो मन तब ही पयो प्रसन्न राजयोग तख्त दियन गुर रामदास रड जिसे तारयो तरत अर व्योम अर पवन ते नीर सर अवर अनल अनाद कियो सस रेख निस सूर दिन सैल तरु फल फुल दियो सुर नर सप्त समुन्दर के तारयो त्रि पवन जास सोई एक नाम हर नाम सत पायो गुर अमर प्रगास कच्चो कंचन पयो शब्द गुर श्रवणै सुनयो बिखते अमृत होयो नाम सतगुर मुख पणयो लोहो होयो लाल नदर सतगुर जा तारै
पाहण मानक करै ज्ञान गुर कहो बिचारै। काठो श्रीखंड सतगुरु की आओ दुख दरिद्र तिनके गए। सतगुरु चरण जन परसिया से पस प्रेत सुर नर पए। जाम गुरु है वल तने क्या गर्व दिजय। जाम गुरु है वल लख बाहे क्या किजय। जाम गुरु है वल ज्ञान अर ध्यान अनन पार। जाम गुरु है वल शब्द साखी सो सच्चै कार। जो गुरु गुरु अहनस जपै दास पट बेनत कह। जो गुरु नाम रिद मैं तरै सो जन्म मरण दो थेरै। गुर बिन कोर अंधार गुरु बिन समझ ना आवै। गुर बिन सुरत ना सिद्ध गुरु बिन मुक्त ना पावै। गुर कर सच विचार गुरु कर रे मन मेरे। गुर कर शब्द सपुन अगन कटै सब तेरे। गुर नैन बैन गुर गुर करहो गुरु सत कब नल कह। जिन गुरु ना देखियो नहो कियो ते अक्यत संसार मह। गुरु गुरु गुर कर मन मेरे तारन तरन समर्थ कल युग। सुनत समाद शब्द जिसके रे। फुन दुख नास सुखदायक सूरो जो तरत ध्यान बसत तेह नेरे। पूरो पुरख हृदय हर सिमरत मुख देखत अग जाहे परेरे। जो हर बुद्ध रिद सिद्ध चाहत गुरु गुरु गुर कर मन मेरे। गुरु मुख देख गुरु सुख पायो हुती जो प्यास पी उस पे वन की। वंछत सिद्ध को बिद मिलायो पूर्ण पो मन ठौर बसो। रस बासन से ओ जो दहंग दिस्तायो गोबिंद वाल गोबिंद पुरी सम। जलन तीर विपास बनायो गयो दुख दूर बरखन को। सो गुरु मुख देख गुरु सुख पायो। समर्थ गुरु सिर हथ तरियो गुर की नी कृपा हर नाम दियो। जिस देख चरण अगन हरियो निस्बासर एक समान ध्यान। सो नाम सुने सुत पान डरियो पन दास सुवास जगतर गुरु की। पारस पेट परस करियो रामदास गुरु हर सत कियो। समर्थ गुरु सिर हथ तरियो अब राखो दास पाठ की लाज। जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की हर नाग सफारे कर आज। फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी। शीनत बस्तर दीन बहु साज सो दामा अपदा ते राखिया। गनका पड़त पूरे तह काज श्री सतगुर सो प्रसन्न कल युग होए। राखो दास पाठ की लाज झोलना गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप प्राणिया। शब्द हर हर जपै नाम नाम निद अपै। रसन अहनस रसै सत कर जानिया। फुन प्रेम रंग पाई है गुरमुख है ते आई है। अन मार्ग तजो भजो हर ज्ञानिया। बचन गुर रिद तरो पंच पू बस करो। जन्म कुल उधरो द्वार हर मानिया। जाओ ता सब सुख एत्योत तुम बंछवो। गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप प्राणिया। गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप सत कर। अगम गुण जान निदान हर मंत्रो त्यान। अहनिस करो बचन गुर दै तर। फुन गुरु जल बिमल अथाह मज्जन करो। संत गुर सिख तरो नाम सच रंग सर। सदा निर्वैर निरंकार निरपौ जपै। प्रेम गुर शब्द रस करत दृढ़ भगत हर। मुग्ध मन भ्रम तजो नाम गुरमुखो भजो। गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप सत कर। गुरु गुर गुर करो गुरु हर पाईऐ। उदत गुर गहर गंभीर बेअंत हर। नाम नग हीर मन मिलत लेवल आई है। फुन गुरु परमल सरस करत कंचन परस। मैल दुरमत हिरत शब्द गुर त्याई है। अमृत प्रवाह छुटकंत सत द्वार जिस। ज्ञान गुर बिमर सर संत सिख नाई है। नाम निर्वाण निदान हर उर तरह। गुरु गुर गुर करहो गुरु हर पाई है। गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप मन रे। जाकी सेव सेव सिद्ध साधक सुर असुर। गण तरह तेतीस
ਗੁਰ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੰਨ ਰੇ ਫੁੰਤਰੈ ਤੇ ਸੰਤ ਹਿਤ ਭਗਤ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰੈ ਤਰਿਓ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਗੁਰ ਮਿਲਤ ਮੁਨ ਜਨ ਰੇ ਤਰੈ ਨਾਰਦਾਦ ਸੰਕਾਦ ਹਰ ਗੁਰਮੁਖੈ ਤਰੈ ਇਕ ਨਾਮ ਲੱਗ ਤਜੋ ਰਸ ਅੰਨ ਰੇ ਦਾਸ ਬੇਨਤ ਕਹੈ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖ ਲਹਿ।

श्री गुरु साहेब सब ऊपर करी कृपा, सत युग जंतरू पर श्री प्रहलाद भगत उदरियंग, हस्त कमल माथे पर धरियंग, अलख रूप जी लख्या ना जाई, साधक सिद्ध सगल सरनाई, गुर के बचन सत जी तारो, मानस जन्म देह निस्तारो, गुर जहाज खेवट गुरु गुर बिन तरिया ना कोए, गुर प्रसाद प्रभ पाईए गुर बिन मुक्त ना होए, गुरु नानक निकट बसै बनवारी तन लहना थाप जोत जगतारी, लहना पंथ धर्म का किया अमरदास पल्ले कौ दिया, तिन श्री रामदास सोडी थर थप्यो हर का नाम अखै निद अप्यो हर नाम अखै निद चहो जुग, गुर सेवा कर फल लहियंग, बंदे जो चरण सरण सुख पावै परमानंद गुरमुख कईयंग, प्रतख देह पार ब्रह्म स्वामी आद रूप कोखण परणंग, सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारण तरणं, जेह अमृत बचन बाणी साधु जन जप है कर बचित चाओ, आनंद नित मंगल गुर दर्शन सफल संसार, संसार सफल गंगा गुर दर्शन, परसन परम पवित्र गते जीते जम लोक पतत जे प्राणी, हर जन सेव गुर ज्ञान रते, रग वंश तिलक सुंदर दशरथ कर मुन बंछे जाकी सरणं, सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारण तरणं, संसार अगम सागर तुलहा हर नाम गुरु मुख पाया, जग जन्म मरण पग्गा ए आई ही है प्रतीत, प्रतीत ही है आई जन जन कै तिनको पदवी उच पई, तज माया मोह लोभ अर लालच काम क्रोध की बिरथा गई, अवलोकिया ब्रह्म परम सब छुटकिया, दिव दृष्ट कारण करण सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारण तरण, प्रताप सदा गुर का कट कट प्रगास पया जस जन कै, एक पड़े सुने गावे प्रभाते करे इशनान, इशनान करे प्रभात शुद्ध मन, गुर पूजा विद सहत करं कंचन तन होए परस पारस कहो, ज्योत स्वरूपी ध्यान तरं, जग जीवन जगन्नाथ जल थल मैं रहया पूर बहुविद वर्णं, सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारण तरणं, जिनो बात निश्चल त्रू जानी तेई जीव काल ते बचा, तिन तरयो समुंदर रुद्र खिन एक मैं जल हर बिंब जुगत जग रचा, कुंडलनी सुरजी सतसंगत परमानंद गुरु मुख मचा, श्री गुरु साहेब सब ऊपर मन बच क्रम सेवी है सच्चा, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो, कवल नैन मदर बैन कोट सैन संग सोब, कहत मां जसोद जिसै दही पात खाहे जियो, देख रूप यातन रूप मोह महा मग पई, किंकनी शब्द चुनतकार खेल पाहे जियो, काल कलम हुक्म हाथ कहो कौन मेट सकै, ईस बम ज्ञान ध्यान तरत ही है चाहे जियो, सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तुही, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो, राम नाम परम धाम शुद्ध बुद्ध निरीकार, बेसुमार सर्वर कौ काहे जियो, सुथर चित भगत हित
ਪੇਖ ਧਰਿਓ ਹਰਨਾਕ ਸਹਰਿਓ ਨਖ ਵਿਦਾਰ ਜੀਓ ਸੰਖ ਚੱਕਰ ਗਦਾ ਪਦਮ ਆਪ ਆਪ ਕੀਓ ਸ਼ਦਮ ਅਪਰੰਪਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਖੈ ਕੌਣ ਤਾਹੇ ਜੀਓ ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੂਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿ ਜੀਓ ਪੀਤ ਬਸਨ ਕੁੰ ਦਸਨ ਪ੍ਰਿਆ ਸਹਿਤ ਕੰਠ ਮਾਲ ਮੁਕਟ ਸੀਸ ਮੋਰ ਪੰਖ ਚਾਹੇ ਜੀਓ ਬੇਵਜੀਰ ਵੱਡੇ ਤੀਰ ਧਰਮ ਅੰਗ ਲਖ ਅਗਮ ਖੇਲ ਕੀਆ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹੇ ਜੀਓ ਅਕਥ ਕਥਾ ਕਥੀ ਨਾ ਜਾਏ ਤੀਨ ਲੋਕ ਰਿਆ ਸਮਾਏ ਸੁਤੈ ਸਿਧ ਰੂਪ ਧਰਿਓ ਸਾਹਨ ਕੈ ਸਾਹੇ ਜੀਓ ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੁਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿ ਜੀਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ ਬਲੈ ਛਲਨ ਸਬਲ ਮਲਨ ਭਗਤ ਫਲਨ ਕਾਨ ਕੁਵਰ ਨਿਹ ਕਲੰਕ ਬਜੀ ਡੰਕ ਚੜੂ ਦਲ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀਓ ਰਾਮ ਰਵਣ ਦੁਰਤ ਦਵਣ ਸਗਲ ਪਵਨ ਕੁਸਲ ਕਰਨ ਸਰਭੂਤ ਆਪ ਹੀ ਦੇਵਾਦ ਦੇਵ ਸਹਿਸ ਮੁਖ ਫਨਿੰਦ ਜੀਓ ਜਰਮ ਕਰਮ ਮੱਛ ਕੱਛ ਹੋ ਬਰਾਹਾ ਜਮਨਾ ਕੈ ਕੂਲ ਖੇਲ ਖੇਲਿਓ ਜਿਨ ਗਿੰਦ ਜੀਓ ਨਾਮ ਸਾਰਹੀਏ ਤਾਰ ਤਜ ਵਿਕਾਰ ਮਨ ਗਿਅੰਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਤਿ ਜੀਓ ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਮਾਨ ਨਿਜ ਨਿਧਾਨ ਸਚ ਜਾਨ ਮੰਤਰ ਇਹ ਨਿਸਬਾਸਰ ਹੋਏ ਕਲਿਆਣ ਲਹਿ ਪਰਮ ਗਤ ਜੀਓ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਜਨ ਜਨ ਸਿਉ

चरण कमल सदा से ओ दृढ़ता कर मत जियो। नाम सार हिये तार तज बिकार मन ग्यंद, श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु सत जियो। सेवक कै भरपूर जुग जुग, वाहगुरु तेरा सब सदका। निरंकार प्रभ सदा सलामत, कह ना सकै को तू कद का। ब्रह्मा विष्णु सिरे तैं अगणत, तिनको मोह भया मन मद का। चौरासी लख जोन उपाई, रिजक दिया सब हूं कौ तद का। सेवक कै भरपूर जुग जुग, वाहगुरु तेरा सब सदका। वाहो वाहो का बड़ा तमाशा, आपे हसै आप ही चितवै, आपे चंद सूर परगासा। आपे जल आपे थल थम्मन, आपे किया कटकट बासा। आपे नर आपे फुन नारी, आपे सार आप ही पासा। गुरमुख संगत सबै बिचारो, वाहो वाहो का बड़ा तमाशा। किया खेल बड़ मेल तमाशा, वाहे गुरु तेरी सब रचना। तू जल थल गगन पे

निरंजन जचना गुर प्रसाद पाइए परमार्थ सतसंगत सेती मन खचना। किया खेल बड़मेल तमाशा वाह गुरु तेरी सब रचना। अगम अनंत अनाद आद जिस कोय न जाने शिव ब्रंच तर ध्यान नित जिस वेद बखाने। निरंकार निर्वैर अवर नहीं दूसर कोई पंजन गण समरथ तरन तारन प्रभ सोई। नाना प्रकार जिन जग कियो जन्म मथुरा रसना रसै श्री सतनाम करता पुरख गुरु रामदास चित्तै बसै। गुरु समरथ गह करिया त्रुव बुद्ध सुमत सुमारन को फुन त्रम तुजा फहरंत सदा अग पुंज तरंग निवारण को। मथुरा जन जान कही जी साच सो और कशु ना विचारन को। हर नाम बोहित बड़ो कल मैं पवसागर पार उतारन को। संतत ही सतसंगत संग सो रंग रते जस गावत है। धर्म पंथ तरयो तरनी तर आप रहे लिव तारना तावत है। मथुरा पन भाग पले उनके मन इच्छित ही फल पावत है। रव के सुत को तिन त्रास कहा जो चरण गुरु चितलावत है। निर्मल नाम सदा परपूर्ण शब्द तरंग प्रगटत दिन आगर। गहर गंभीर अथाह अत बड़ सुबर सदा सब बेदर्त नागर। संत मराल करै कंतूहल तिन जम त्रास मिट्यो दुख कागर। कल युग दुर्त दूर कर बे कहो दर्शन गुरु सगल सुख सागर। जा को मन ध्यान तरै फिरत सगल युग कब हुक को उपावै।

नारद ध्रुव प्रहलाद सुदामा पुब भगत हर के जुगण अमरीक जय देव त्रिलोचन नामा अवर कबीर पण तिन को अवतार भयो कल पिंतर जस जगत्र पर छायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं तैं हर परम पद पायो मनसा कर स्मरंत तुझै नर काम क्रोध मिट्यो जो तिन बाचा कर स्मरंत तुझै तिन दुख दरिद्र मिट्यो जो खिण कर्म कर तो दर्श परस पारस सरबल भट्ट जस गायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं तैं हर परम पद पायो जे सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटै खेन जे सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन जे सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावै जे सतगुर सिमरंत रिद सिद्ध नवनिध पावै सोई रामदास गुरबल पाण मिल संगत तन तन करो जे सतगुर लग प्र पाई है सो सतगुर सिमरो न रो जिन शब्द कमाए परम पद पायो सेवा करत ना छोड्यो पास ताते गौहर ज्ञान प्रकट उजियारो दुख दरिद्र अंधियार को नास कव कीर्त जो संत चरण मुड़ लागे तिन काम क्रोध जम को नहीं त्रास जिव अंगद अंग संग नानक गुर तिव गुर अमरदास कै गुर रामदास जिन सतगुर सेव पदार्थ पायो निसबासर हर चरण निवास ताते संगत सगन पाए पौ मान तुमली अगर प्रगट सुवास ध्रुव प्रहलाद कबीर त्रिलोचन नाम लैत उपजो जो प्रगास जिह पिखत अत होए रहस मन सोई संत सहार गुरु रामदास नानक नाम निरंजन जाना कीनी भगत प्रेम लिव लाई ताते अंगद अंग संग पयो सायर तिन शब्द सुरत की नींव रखाई गुर अमरदास की अकथ कथा है एक जीही कश कही ना जाई सोडी सरिट सगल तारन कहो अब गुर रामदास कहो मिली बड़ाई हम अब गुण परे एक गुण नाही अमृत शाड बिख बिख खाई माया मोह परम पै पूले सुतदारा स्यों प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संग।

तह मिलंत जम त्रास मिटाई, एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो सरनाई। मोह मल बिवस कियो, काम गै केस पछाड़ियो, क्रोध खंड प्रचंड, लोभ अपमान स्यों चाड़ियो। जन्म काल कर जोड़, हुक्म जो होए सो मन्नै, पव सागर बंदियो, सिख तारे सो प्रसन्नै। सिर आत पात।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महला नावा गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म अकार्थ कीन कहो नानक हर भज मना जेह बिद जल कौ मीन बिख्यन स्यों काहे रचियो निमख ना होहे उदास कहो नानक भज हर।

तन तन संपै सुख दियो, अर जेह नीके धाम, कहो नानक सुन रे मना, सिमरत काहे नाराम। सब सुख दाता राम है, दूसर नाहिन कोय, कहो नानक सुन रे मना, तह सिमरत गत होए। जह सिमरत गत पाई है, तेह पजरे तै मीत, कहो नानक सुन रे मना, औद कटत है नीत। पांच तत् को तन रचियो, जानो।

कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहे बखान। जे बिखिया सगली तजी, लियो पेख बैराग, कहो नानक सुन।

कहो नानक हर भजन बिन परत ताहे जम फंद। सुख मैं बहु संगी पै दुख मैं संग ना कोए, कहो नानक हर भज मना अंत सहाई होए। जन्म जन्म परमत फिरयो मिट्यो न जम को त्रास, कहो नानक हर भज मना निरपै।

जतन बहुत मैं कर रहे हो मिट्यो न मन को मान दुर्मत स्यो नानक फदेओ राख ले हो भगवान। बाल जवानी यार बिरद फुन तीन अवस्था जान कहो नानक हर भजन बिन बिरथा सब ही मान। करनो हो तो सोना कियो परयो लोभ के फंद नानक समयो रम गयो अब क्यों रोवत अंध। मन माया में रम रहे हो निकसत नाहिन मीत नानक मूर्त चित्र ज्यों छाड़त नाहन पीत। नर चाहत कश और की और पई चितवत रहे उठ गौर नानक फासी गल परी। जतन बहुत सुख के किए दुख को कियो ना कोए कहो नानक सुन रे मना हर पावे सो होए। जगत पिखारी फिरत है सबको दाता राम कहो नानक मन सिमरत है पूर्ण होवे काम। झूठे मान कहां करे जग सुपने ज्यों जान इनमें कछ तेरो नहीं नानक कहो बखान। गर्भ करत है देह को बिन सैशन में मीत जह प्राणी हर जस कहो नानक तेह जग जीत। जेह कट सिमरन राम को सो नर मुक्ता जान तेह नर हर अंतर नहीं नानक साची मान। एक भगत भगवान जेह प्राणी कह नाहे मन जैसे सुकर स्वान नानक मानो ताहे तन। स्वामी को गृह ज्यो सदा स्वान तजित नहीं नित नानक एह बिद हर पयो एक मन होए एक चित। तीर्थ वर्त अरदान कर मन में तरे गुमान नानक ने फल जात तह जो कुंचर इशनान। सिर कंपियो पग डग मगे नैन जोत ते हीन कहो नानक यह बिद पई तऊ नहर रसलीन। निज कर देखियो जगत में को काहू को नाहे नानक थिर हर भगत है तह राखो मन माहे। जग रचना सब झूठ है जान ले हो रे मीत कह नानक थिर ना रहे।

जो अनहोनी होए, एहो मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोए। जो उपजियो सो बिरस है, परों आज कह काल, नानक हर गुण गाए ले, छाड़ सगल जंजाल। दोहरा बल छुटक्यो बंधन परे, कशु न होते उपाय, नानक सब किश तुमरे हाथ में, तुम ही होत सहाय। संग सखा सब तज गए, को न निभयो साथ, कहो नानक एह बिपत मैं, टेक एक रघुनाथ। नाम रहयो

एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग माला राग एक संग पंच बरंगन संग अलाप आठो नंदन प्रथम राग पैरो वै करही पंच राग नी संग उचरही प्रथम पैर भी बेलावली पुनिया की गावे बंगली पुन असलेखी की पई बारी ए पैरों की पंचो नारी पंचम हरख दिशाख सुनावे बंगालम मदमाद वगावे ललत बिलावल गावही अपनी अपनी पांत अष्टपुत्र पैरव के गावह गायन पात्र द्वितीया माल कौसकिया लाप संग रागनी पांचौ थाप गोंड करी अर देव गंधारी गंधारी सी हुती उचारी तनासरी ए पांचौ गाई माल राग कौशक संग लाई मारू मस्त अंग मेवारा परबल चंड कौशक ओ भारा खौ खटियो पौरा नद गाए अष्टमाल कौशक संग लाए पुन आयो हिंडोल पंचनार संग अष्ट सुत उठह तान कलोल गायन तार मिला वही तेलंगी देव करी आई बसंती संदूर सुहाई सरस अहीरी ले पार जा संग लाई पांचो वार जा सुरमानंद पास कर आए चंद्रबिंब मंगलन सोहाए सरस बान औ आहे बिनोदा गावे सरस बसंत कमोदा अष्टपुत्र मैं कहे सवारी पुन आई दीपक की बारी कशेली पट मंजरी टोडी कही अलाप कामोदी औ गुजरी संग दीपक के थाप कालंका कुंतले और रामा कमल कुसुम चंपक के नामा गौरा औ कानरा कल्याणा अष्टपुत्र दीपक के जाना सब मिल श्री राग वै गावै पांचो संग बरंगन लावै बैरारी करनाटी तरी गवरी गावै आसावरी तेह पाछे सिंधवी आलापी श्री राग स्यो पांचो थापी सालू सारग सागरा और गोंड गंभीर अष्टपुत्र श्री राग के गोंड कुंभ हमीर खष्ट मेघ राग वै गावै पांचो संग बरंगन लावै सोरठ गोंड मलारी तुनी पुन गावे आसा गुन गुनी ऊचे सुरसू हो पुन कीनी मेघ राग स्यो पांचो चीनी बैरा तार गज तर के दारा जबली तर नट औ जल तारा पुन गावे शंकर औ श्यामा मेघ राग पुत्रन के नामा
खष्ट रागी उन गाए संग राग नीतीस सब पुत्र रागन के अठारह दस बीस खष्ट रागी उन गाए संग राग नीतीस सब पुत्र रागन के अठारह दस बीस। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

अरदास एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती स्मरक है गुरु नानक लई ते आए फिरंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नौ सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठै सब दुख जाए तेग बहादुर सिमर है कर नौन दे आवै ताए सब थाई हुई सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पंथ दे वाली सब थाई हुई सहाय दसा पातशाहियां के स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान करके खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। गुरु साहिब जी दे पंज प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्ते हठियां जपियां तपियां जिन्हां ने तेरा नाम जपिया वंड के छकिया देग चलाही तेग वाही देख के अंडिठ कीता तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई का ध्यान करके खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां ध्यान करके खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हे सीस दित्ते बंद बंद कटवाए चरखड़ियां ते चढ़े आरिया नाल चिराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई का ध्यान करके खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। आप जी दे गुरसिखां नूं गुरसिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिरदान नामदान श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान आप जी दे गुरसिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत पतकारा खाप अकाल पुरख वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। नाम चितावै चितावन का सदका सर्व सुख होवै बिरद की पैज रहे पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय सत श्री अकाल पुरख जी का ध्यान करके खालसा साहिब बोलो श्री वाहिगुरु वाहिगुरु। हे महाराज श्री निरंकार ज्योति स्वरूप धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी दसा पातशाहियां के स्वरूप धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी दे हजूर ऐस वक्त अरदास बेनती है आप जी ने महान बख्शिश कीती है पातशाह जीओ आप जी दा ओट आसरा लैंदिया होया सेवक परिवार ने सहज पाठ आरंभ करवाया सी सहज पाठ दी सीडी दी सेवा कीती है सीडी बनाण दी सेवा करदिया अनेका भुलां होईयां होणगियां गुरु अते गुरु की संगत बख्शण योग है पाठ दा फल सेवक परिवार नूं बख्शण दी कृपालता करनी जी पाठी सिंह पासों पाठ करदिया अनेका भुलां होईयां होणगियां गुरु अते गुरु की संगत बख्शण योग है बख्शण दी कृपालता करनी साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी आप जी ने महान बख्शिश कीती है सहज पाठ दी निर्विघ्नता सहित समाप्ति हुई है सेवक परिवार वालों आप जी नूं सोहणे रुमाले पछाके हाजिर होए हन आप जी ने अंगीकार करने सेवकां दे पर्दे कजने सेवक परिवार नूं गुरसिखी ते नामदान दी दात बख्शिश करनी पातशाह चढ़दियां कला बख्शिश करनिया पातशाह कारोबार च बरकतां पाउणियां अंग संग सहाई होना छे पौड़ियां आनंद साहिब दा पाठ होया बाणी पढ़ी सुनी सचखंड विखे प्रवान करनी बाणी दा भाव सेवक परिवार दे हिरदियां विखे वसाउणा सेवक परिवार वालों पवित्र कड़ाह प्रसाद दी देग ते लंगर हाजिर है आप जी दर ते प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरते जो छके आप जी दा पवित्र नाम जपे सुख होवे नाम चित आवे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह दोहरा।

0: बोले सोनिहाल सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ, सो कहो टल गुर सेवी अहनस सहज सुभाए, दर्शन परसे ऐ गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। टोडी महला पंजवा, माई मेरे मन को सुख, कोट आनंद राज सुख भुगवे, हर सिमरत बिनसै सब दुख। माई मेरे मन को सुख, कोट आनंद राज सुख भुगवे, हर सिमरत बिनसै सब दुख। रहाओ कोट जन्म के किल बिख नासै, सिमरत पावन तन मन सुख। देख स्वरूप पूर्ण भई आसा, दर्शन भेटत उत्तरी भुख। चार पदार्थ अष्ट महासिद्ध, काम तेन पार जात हर हर रुख। नानक शरण गही सुख सागर, जन्म मरण फिर गर्भ ना दुख। चार पदार्थ अष्ट महासिद्ध, काम तेन पार जात हर हर रुख। नानक शरण गही सुख सागर, जन्म मरण फिर गर्भ ना दुख। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: You are listening to SeekNet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.

अहंकार, असंख जाप, असंख पाव, असंख पूजा, असंख तपताव, असंख ग्रंथ, मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती, असंख दातार, असंख सूर मुह पख सार, असंख मोन लिवलाय तार, कुदरत कवन कहां विचार, वारिया न जावा एक बार, जो तुद पहावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख मूर्ख अंध कोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गलवड हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़े आर कूड़े फिराहे, असंख मलेश मल पख खाहे।

अमूल गुण अमूल व्यापार अमूल व्यापार ये अमूल भंडार अमूल आहे अमूल ले जाहे अमूल पाए अमूला समाहे अमूल धर्म अमूल दीवान अमूल तुल अमूल प्रवाण अमूल बख्शीस अमूल निशान अमूल कर्म अमूल फुरमान अमूलो

भरपूर तिथै सीतो सीता मैं मामा हे ता के रूप ना कथने जाहे ना ओह मरहै ना ठागे जाहे जिन कै राम वसै मन माहे तिथै भगत।

पवन गुरु पाणी पिता माता तहत महत दिवस रात दोय दाई दाया खेलै सगल जगत चंगयाइयां बुरयाइयां वाचै धर्म हदू।

विचारे। गावन तुदनो जति सती संतोखी, गावन तुदनो वीर करारे, गावन तुदनो पंडित पढ़न रखी सर, जोग जोग वेदा नाले, गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुर्ग माछ पयाले, गावन

पास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास तन तन सतसंगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम प्रगास राग गुजरी महला पंजवा काहे रे मन चित वह उद्यम जा आहर हर जियो परया सैल पत्थर में

जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जी तिनका भउ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे

तेरी अनक तेरी अनक करह हर पूजा जी, तब ताप है जप है बेअंता, तेरे अनेक पढ़ है बहु सिमृत शास्त्र जी।

परमल मुख सुधी अगन क्रोध चंडार रस कस आप सलाहना ए कर्म मेरे करतार बाबा बोलिए पत होए।

जल बुझी पाया गुरमुख ज्ञान रहाउ। अंतर की गत जानिए गुर मिलिए शंख उतार, मुया जित कर जाइए तित जीम दया मर मार। अनहद शब्द सुहावने।

जिस सतगुर पुरख ना भेटियो सो भाव जल पचाए पचाए यो मानक जियो निर्मोल है यो कौडी बदलै जाए जिन्ना सतगुर रस मिले से पूरे पुरख सुजान गुर मिल भाव जल लंघी है।

पाया नाम निदान, अंतर हर सरब रहया चूका मन अभिमान, हृदय कमल प्रगासया लागा सहज ध्यान, मन निर्मल हर रब रहया पाया दरगह मान। सतगुर सेवन अपना ते विरले संसार, हौ मैं ममता मार कै हर राख्या उरतार, हौ तिन कै बलिहारण जिन्ना नामे लगा प्यार, सेई

कह सदा हदूर जिन गुण तिन सद मन वसै औ गुणवंतियां दूर मन मुख गुण तै बाहरे बिन नाम है मर दे चूर जिन

गया पछताए। जिस नदर करे सो उबरे, हर से पील बलाए। देखा देखी सब करे, मन मुख बूझ ना पाए। जिन गुरमुख हृदय शुद्ध है।

सौ तीर्थ नहाए, बहुबिद कर्म कमावंदे दूनी मल लागी आए। पढ़िया मैल न उतरे, पूछ हो ज्ञानियां जाए, मन मेरे गुर शरण आवे ता निर्मल होए।

रंग हर सब जग मह चानन होए श्री राग महला पंजवा मन बिलास बौ रंग कणा दृष्ट फूल खुशियां शतर धार बादशाहियां विच सहसे परियां पाई रे सुख साध संग पाया लिखिया लिख।

आप हुआ मेहरबान, सच महल कर पाया गुर का शब्द पछान। भगत जना कौ राखदा अपनी कृपा तहार, हलत पलत मुख उजले साचे के गुणसार। आठ पहर गुणसार दे रते रंग अपार, पार ब्रह्म सुख सागरो नानक सद बलिहार।

जपिए अमृत नाम जन्म मरण दुख काटिए लागे सहज ध्यान मेरे मन प्रभु शरणाई पाए हर दिन दूजा को नहीं एको नाम त्याए रहाओ कीमत कहन न जाइए सागर गुणी अथाह वडभागी मिल संगति सच्चा शब्द विसाह कर सेवा सुख सागर सिर शाह पातशाह चरण

नाम अमृत नदर निहाल, मन मेरे सदगुर सेवा सार, करे दया प्रभ अपनी एक निमख न मनहो विसार। रहा गुण गोविंद नित गावी है अवगुण कटन हार, बिन हर नाम न सुख होए कर डिठे विस्तार। सहजे सिफती रत्या पवजल उतरे पार, तीर्थ वर्थ लक।

साची पूंजी सच संजमो आठ पहर गुण गाओ कर कृपा प्रभ पेटिया मरन नावन जाओ मेरे मन हर भज सदा एक रंग घट घट अंतर रव रहया सदा सहाई संग रहाओ सुखां की मित क्या गणी जान सिमरी गोविंद जिन चाखिया

राजन रिंद अवसर हर जस गुण रमन जित कोट मजन इशनान रसना उचरै गुणवती कोई न पुजै दान दृष्ट तार मन तन वसै दयाल पुरख मेहरवान।

गुर जेवड़ अवर न को दूजा थाओ ना को सुजै गुर मेले सच सोए रहाओ। सगल पदार्थ तिस मिले, सगल पदार्थ तिस मिले जिन गुर डिठा जाए, गुर चरणी जिन मन लगा सेवड पागी माए। गुरदाता समरथ गुर, गुर सब मह रहया समाए, गुर परमेश्वर पार ब्रह्म गुर डुबदा लय तराए। कित मुख गुर साला ही है करण कारण समरथ, से मथे ने चल रहे जिन गुर तारिया हाथ। गुर अमृत नाम पिया लिया जन्म मरण का पथ, गुर परमेश्वर सेविया पै भंजन दुख लथ। सतगुर गहर गंभीर है सुख सागर अग खंड, जिन गुर सेविया अपना जमदूत न लागे डंड। गुर नाल तुल न लगई खोज डिठा ब्रह्मांड, नाम निधान सतगुर दिया सुख नानक मन महमंड। श्री राग महला पंजवां।

रहा जिचर वस्या कंत कर जियो जियो सब कहात जा उठी चलसी कंतड़ा ता कोई न पुछे तेरी बात पे अड़ै शहो सेव तू साहुरड़ै सुख वस गुरमिल चज आचार सिख तुद कदे न लगे दुख।

सहत्या बहुमन मेरे सर्ब को आधार, गुर के चरण मन माहे त्याय, गुर के चरण मन महे त्याए, छोड़ सगल स्यान पा साज शब्द लिबलाए रहाओ, दुख क्लेश ना पो ब्यापै गुर मंत्र हृदय होए, कोट जतना कर रहे गुर बिन तरयो ना कोए, देख दर्शन मन साधारे पाप सगले जाहे, हौ तिन कै बलिहार ने जे गुर की पैरी पाहे, साध संगत मन बसै साच हर का नाउ, सेवड भागी नानका जिन्ना मन इहो पाओ, श्री राग महला पंजवां संच हर तन।

संसार आप छोड़ सब होए रेणा जिस देव प्रभ निरंकार जो दिसै सो सगल तू है पसरिया पासार कहो नानक गुर परम काटिया सगल ब्रह्म विचार श्री राग महला पंजवां दो

जाना रहाओ। मान अभिमान मंधे सो सेवक नाही, तत समदर्शी संत हो कोई कोट मंदाही। कहन कहावन इहो कीरत करला, कथन कहन ते मुक्ता गुरमुख कोई बिरला। गात अवगत।

सभी मद सभै ते बाहर बे मोहताज बापा पिता हों जानो नाहीं तेरी कवन जुगता बंद।

दास सतगुर शरणी आया बाहुड़ नहीं बिनास हर नानक कदे न विसरो इहो जियो पिंड तेरा सास श्री राग महला पंजवा संत

सच्चा नाम सास गिरास न विसरै सफल मूर्त गुर आप गुर जीवड अवर न दिसई आठ पहर तिस जाप नदर करे ता पाई सच नाम गुणतास।

नानक गुरु शरणागति मरै नहावै जाय। एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री राग महला पहला घर पहला अष्टपदियां आख आख मन भावना ज्यों ज्यों जापै वाए जिसनो वाए सुनाई है सो केवट कित थाए आखण वाले जेतड़े सब आख रहे लिवलाए बाबा अल्लाह।

दर दर वेश रसीद बरकत तिनको अगली पढ़ दे रैन दरूद बरकत तिनको अगली पढ़ दे रहन दरूद पोछना साजे पोछना टाहे पोछना दे वैले अपनी कुदरत आपे जाने आपे करन करे सबना वेख

जाए, नेत्र वै सुहागणी साची नदर रजाए, साच धड़ी मन धन मांडी है, साच धड़ी धन मांडी है, कापड़ प्रेम सिंगार चंदन चीत बसाया, मंदिर दसवां द्वार दीपक शब्द विगासया, राम नाम उरहार नारी।

जलो आपे भगत बसीठ गुर कै शब्द सलाहना घट घट डीठ अडीठ आपे सागर बोहे था आपे पार अपार साची वाट सुजान तू शब्द लंगावन हार निडरिया डर जानिए बाज गुरु गुबार आस्थिर करता देखिए होर केती आवे जाए आपे निर्मल एक तू होर बंदी तंदे पाए गुरड़ा थे से उबरे साचे स्यों लिवलाए।

श्री राग महला पहला गुर ते निर्मल जानिए निर्मल दे शरीर निर्मल साचो मन वसै सो जाने अब पीर सहज

बूझ ना होए, सुख दुख सम कर जानिए है, शब्द भेद सुख होए, वेद पुकारे वाचिए बाणी ब्रह्म व्यास, मन जन सेवक साधका नाम रते गुणतास, सच रते से जिन गए हों सद बलिहारै जास, चहु जुग

क्यों थिर रह सुहाग पाई रे अवर नाही मैं थाऊं मैं तन नाम निदान है गुर दिया बल जाऊं रहाऊं।

अब पीर रे मन ऐसी हर्ष्यों प्रीत कर जैसी चात्रक में सार पार थल हरियावले एक बूंद न पवै खे सार पार थल हरियावले एक बूंद न पवै के हे कर्म मिले सो पाई किरत पया सिर दे रे मन ऐसी हर्ष्यों प्रीत कर जैसी जल

बहुता जीवन मंगिया मुआ न लोड़ कोय सुख जीवन तिस आखिया जिस गुरमुख वसया सोए नाम विहूणे क्या गणी जिस हर गुर दर्शना होए ज्यों सुपने निस भुलिय जब लग निंद्रा होए इउं सरपन कै बस जियड़ा अंतर हो मैं दोए गुरमत होए विचारिय सुपना एहो जग लोए।

मन मुख पात गवाई, बिन सतगुर को मग न जाने, अंधे ठौर न काई, हर सुखदाता मन नहीं वसया, अंत गया पछताई। तेई अड़े जग जीवन दाता, गुरमत मन वसाया, आनंदन भगत करह।

पंखी बिरख सुहावड़े उड़ है चौ दिस जाए, जेता उड़ है दुख घणे नित दाज है तै दिल लाहे। बिन गुर महल ना जापई ना अमृत फल पाहे, गुरमुख ब्रह्म हरियावला साचै सहज सुभाय। शाखा तीन निवारिया एक शब्द लिवलाय, अमृत फल।

समाए हर निर्मल अत उजला बिन गुर पाया ना जाए पाठ पढ़े ना बुझई भेखी परम भुलाए गुरमति हर सदा पाया रसना हर रस समाए माया मोह चुकाया गुरमति सहज सुभाए बिन शब्द जग दुखिया फिरे मन मुखा नो गई खाए शब्दे नाम ते आईए शब्दे सच समाए माया भूले सिद्ध फिर है समाध ना लगे।

ब्रह्म जाए। नाम पदार्थ पाई गुरमुख सहज सुभाए, बिन गुर गुण ना जापनी बिन गुण भगत ना होए, भगत वसल हर मन वसया सहज मिलिया प्रभ सोए। नानक शब्दे हर सा लाही करम प्राप्त होए, श्री राग महला तीजा माया वो मेरे प्रभ की ना आपे परम पुलाए। मन मुख कर्म करहे नहीं बूझ है बिरथा जन्म गवाए, गुरबाणी इस जग मह चान।

निवाह जियो तुसी भोगे हो कुंच हो पाई हो गुर दी बाण कवाए पैनाइयो हो होवा माहर पिंड दा बन आंदे पंज शरीक जियो हों आया सामें तिहंडियां।

चले मूल गवाए जियो। तू वरना चिहना बाहरा, हर दिसह हाजर जाहरा। सुन सुन तुझे ध्यान दे, तेरे भगत रते गुणतास जियो। मैं जुग जुग दई ऐसे बड़ी, गुर कट्टी मेहंदी जेवड़ी। हों

करम धर्म नहीं पूजा। नानक पाए भगत निस्तारा, दुविधा व्यापै दूजा। तीजै पहरै रैण कै वणजारिया मित्रा, सरहंस उलथड़े आए। जोबन घटै जरुआ जणै, वणजारिया मित्रा आम घटै दिन जाए। अंत काल पछतासी, अंधले जां जम पकड़ चलाया।

कहो नानक भगत सोह है दरबारे, मन मुख सदा पवात, श्री राग महला चौथा घर दूजा शांत, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मुंद इयाणी पे यड़े क्यों कर हर दर्शन पिखै, हर हर अपनी कृपा करे गुरमुख सौहरड़ै कम सिखै, सौहरड़ै कम सिखै गुरमुख हर हर सदा त्याय, सहिया विच फिरै सुहेली हर दरगाह बां लुडाए, लेखा धर्म राय की बाकी जब हर हर नाम के रखै, मुंद इयाणी पे यड़े गुरमुख हर दर्शन दिखै, व्याह हुआ मेरे बाबुला गुरमुखे हर पाया, अज्ञान अंधेरा कटिया गुर ज्ञान प्रचंड बलाया, बलिया गुर ज्ञान अंधेरा बिनसिया हर रतन पदार्थ लाधा, हौ मैं रोग गया दुख लाथा आप आपै गुरमत खादा,

सुहेला गुर सतगुर दान दिवाया खंड वर भंड हर सोभा होई इहो दान ना रलै रलाया होर मन मुख दाज जे रख दिखा लै सो कूड़ अहंकार कच पाजो हर प्रभ मेरे बाबूला हर देव हो दान मैं दाजो हर राम राम मेरे बाबूला फिर मिल तन वेल वदंदी हर जुग है जुगो जुग।

सतगुर तुठे लड़ लीने लाए नौ निद पाए नाउ सर्वस ठाकुर दीना नानक सिख संत समझाई हर प्रेम भगत मन लीना श्री राग के शंत।

अधहरे, गुण साध संग मिल गावे। नानक के स्वामी तार अनुग्रहो, मन तन अंक समावे। दखना सो हंदड़ो हब ठाए, कोय न दिसे डूजड़ो, खुलड़े कपाट, नानक सतगुर भेट ते।

रंग रतड़ा हर रंग रत हर त्याव हो हर प्रभ सत गुरबचनी हर प्रभ जानिया सब हर प्रभ ते उत्पात रहाओ जिनको पूर्व लिखिया से आए मिले गुर पास सेवक पाए बन जा रिया मित्रा गुर हर हर नाम प्रगास तन तन बन जवा

मन मूर्ख मिलै सजाए, जिन जियो पिंड दिता तिस कब हू ना चेतै, जो देंदा रिजक संबाहे, जमका फाहा गल हुन कटिए, फिर फिर आवै जाए, मन मुख किशु न सूजै अंधले, पूर्व लिखिया कमाए, पूरे भाग सत

माए कूड कुसातक माए गुर प्रसादी मन जने हर से ती लिवलाए। नानक गुरमुख सच कमावे मन मुख आवे जाए पौड़ी। हर के संत सुनहु जन पाई हर सतगुर की एक साखी। जिस तुर भाग होवे मुख मस्तक तिन जन लै हृदय राखी। हर अमृत कथा श्रेष्ठ ऊतम।

पूजिए बिन सतगुर बूझ ना पाए। जब तब संजम पाणा सतगुरु का करमी पल्लै पाए। नानक सेवा सुरत कमावणी, नानक सेवा सुरत कमावणी, जो हर पावै सो थाए पाए पौड़ी। हर हर नाम जपहु मन मेरे, जित सदा सुख होवै दिन राती। हर हर नाम जपहु मन मेरे, जित सिमरत सब किल विख पाप लहाती। हर हर नाम जपहु मन मेरे, जित दालद दुख भुख सब लह जाती।

मुख उजले हर दरगाह पहंदे जाही। श्लोक महला दूजा। जो सिर साई नानवै सो सिर दी जय डार। नानक जिस पिंजर मह बिरहा नहीं।

जन नानक गुर मिल रहस्य जियो। माज महला चौथा। हर गुण पढ़िए हर गुण गुणिए, हर हर नाम कथा नित सुनिए। मिल सतसंगत हर गुण गाए, जग पौजल दुत्तर तरिए जियो। आओ सखी हर मेरे

अमृत रस सच अमृत बोली गुरपूरै अमृत लीचै जियो हर सत संगत सत पुरख मिलाइए मिल सत संगत हर नाम त्याइए नानक हर कथा सुनी मुख बोली गुरमत हर नाम।

तू आपे मन मुख जन्म पवाए। नानक दास तेरै बलिहारै सब तेरा खेल दसहरा जियो। माज महला पंजवा अनहद वाजै सहज सुहेला शब्द आनंद करे सद केला। सहज गुफा महताड़ी लाई आसन ऊच सवारिया जियो। फिर घिर अपने ग्रह में आया जो लोड़ींदा सोई पाया। तृप्त अगाए रहया है संत हो गुर अनुभव पुरख दिखारिया जियो। आपे राजन आपे लोगा आप निर्वाणी आपे भोगा। आपे तख्त बह सच न्याई सब चूकी कूक पुकारिया जियो। जेहा डिठा मैं ते हो कहया तिस रस आया जिन भेद लहया।

सुहाग बनाया, तित कर सखिए मंगल गाया, आनंद बिनोद तितै कर सोह है, जो धन कंत सिंगारी जियो। सा गुणवंती सा वडभागण, पुत्रवंती सीलवंत सोहागण, रूपवंत सा सुगड़ विचखण, जो धन कंत प्यारी जियो। अचारवंत साई परधाने, सब श्रृंगार बने तिस ज्ञाने, सा कुलवंती सा सबराई, जो पिर कै रंग सवारी जियो। महिमा तिसकी कहन ना जाए, जो पिर मेल लई अंग लाए। थिर सुहाग वर अगम अगोचर, जन नानक प्रेम साधारी जियो। माज महला पंजवा, खोजत खोजत दर्शन चाहे, भांत भांत बन बन अवगाहे। निर्गुण

परमाता एक खिन हृदय शांत ना आवै जोगी बहुड़ बहुड़ उठता वै जियो कर कृपा मोहे साध मिलाया मन तन शीतल धीरज पाया प्रभ अविनाशी बसिया कट पीतर हर मंगल नानक गावै जियो माज महला पंजवा पार ब्रह्म अपरंपर देवा अगम अगोचर अलख अपेवा दीन दयाल गोपाल गोविंदा हर त्यावहु गुरमुख गाती जियो गुरमुख मधुसूदन निस्तारे गुरमुख संगी कृष्ण मुरारे दयाल दमोदर गुरमुख पाईऐ होरत कितै न भांति जियो निरहारी केशव निरवैरा कोट जना जाके पूजहै पैरा गुरमुख हृदय जाकै हर हर सोई भगत एकांति जियो अमोग दर्शन बेअंत अपारा वड समरथ सदा दातारा गुरमुख नाम जपियै तित तरियै गत नानक विरली जाती जियो माज महला पंजवा।

अतोले अकाल मूर्त अजूनी संभव मन सिमरत ठंडा थी मां जियो। सदा संगी हर रंग गोपाला ऊंच नीच करे प्रतपाला।

तुम दाते तुम पुरख बिधाते तुम समरथ सदा सुख दाते सबको तुम ही ते बरसावे अवसर करो हमारा पूरा जियो दर्शन।

संत खेल है तुम संग गोपाला। अपने संत तुद खरे प्यारे, तू संतन के प्राणा जियो। उन संतन कह मेरा मन कुर्बाने, जिन तू जाता जो तुद मन पाने। तिन कह संग सदा सुख पाया, हर रस नानक तृप्त अगाना जियो। माज महला पंजवा।

ज्यों बारिक पीखीर अगावै, ज्यों निर्तन तन देख सुख पावै, त्रिखावंत जल पीवत ठंडा, त्यों हर संग इहो मन पीना जियो। ज्यों अंधियारै दीपक परगासा, परता चितवत पूरन आसा, मिल प्रीतम ज्यों होत आनंदा, त्यों हर रंग मन रंगीना जियो। संतन मोकौ हर मार्ग पाया, साध कृपाल हर संग गिजाया, हर हमरा हम हर के दासे। हर हमरा हम हर के दासे, नानक शब्द गुरु सच दीना जियो। माज महला पंजवां, अमृत नाम सदा निर्मलिया, सुखदाई दुख बिडारन हरिया, अवर साध चख सगले देखे।

पावै। नाम निधान तिसह परापत, जिस शब्द गुरु मन बूठा जियो। जिन हर रस पाया सो तृप्त अघना, जिन हर साध पाया सो नाहे डोलाना। तिसह परापत हर हर नामा, जिस मस्तक पागीठा जियो। हर एक हाथ आया बरसाने बहु तेरे, तिस लग मुक्त पए कनेरे। नाम निधाना गुरमुख पाइय, कहो नानक विरली डीठा जियो। माज महला पंजवा, निध सिद रिद हर हर हर मेरा। जन्म पदार्थ गैर गंभीर, लाख कोट खुशियां रंग रावे। जो गुर लागा पाई जियो, जो गुर लागा पाई जियो। दर्शन पेखत पए पुनीता, सगल उधारे पाई मीता। अगम अगोचर स्वामी अपना, गुर कृपा ते।

शब्द विचारा आनंद विनोद करे दिन राती सदा सदा हर के ला जियो जन्म जन्म का बिछड़िया मिलिया साध कृपा ते सूका हरिया।

जस लेखा से चरण सुहावे जो हर मार्ग चले हौ बल तिन संग पछाणा जियो सुन साजन मेरे मीत प्यारे साध संग खिन माहे उधारे किल विख काट होवा मन निर्मल मिट गए आवन जाना जियो किल विख काट होवा मन निर्मल मिट गए आवन जाना जियो दोए का

गुण निदान अमृत हर नामा हर त्याए त्याए सुख पाया जियो मनसा धार जो करते आवे साध संग जन्म मरण मिटावे आस मनोरथ पूर्ण होवे पेटत गुरदर साया जियो अगम अगोचर किश्मित नहीं जानी साधक सिद्ध त्याव है ज्ञानी

सो सच स्वामी रिजक सब सकौ दिए जियो। नाम जपत सर्व सुख पाई है, सब भव बिनसै हर हर ध्याई है।

सबल एहा है कारी जियो, दृष्ट तार अपना दास सवारिया, कट कट अंतर पार ब्रह्म नमस्कारिया, एक सविण होर दूजा।

सागर कटिया जम की फासा जियो। चार पदार्थ हर की सेवा, पार जात जाप अलख अपेवा। काम क्रोध किल बिख गुर काटे, पूर्ण होई आसा जियो। पूर्ण भाग पय जिस प्राणी, साध संग मिले सारंग पानी। नानक नाम वस्या।

सो गुर मिल निहचल कहना, प्रेम भगत जिस कै मन लागी, गुण गावे अन दिन नित जागी, बहां पकड़ तिस स्वामी मिले, जिस कै मस्तक लहना, चरण कमल भगता मन उठे, बिन परमेश्वर सगले मुठे, संत जना की धूड़ नित बांछ है, नाम सच्चे का गहना, उठत बैठत हर हर गाइय।

मनमुख पाप पचा बनिया एक रंग राते जो तुद आप लिव लाए पाए भगत तेरे मन पाए सतगुर सेवन सदा सुखदाता सब इच्छा आप पूजा बनिया हर जियो तेरी सदा शरणाई आपे बख्श हैं दे वड्याई।

किलविख अवगण काटन हारा, प्रेम प्रीत सदा त्याय पै पाए भगत दृढ़ावणिया। तेरी भगत सच्ची जे सच्चे पावे।

के आया बिख पौ जल शब्द तरा बनया रहाओ मनमुख मुगद करह चतुराई नाता तोता थाए ना पाई जिहा आया तेहा जासी कर अवगण पछोता बनया मनमुख अंधे किशु ना सूझ मरण लिखाए आए नहीं बूझे मनमुख कर्म करे नहीं पाए।

गुर कै शब्द अधारा नानक नाम मिले वडियाई दुख सुख सम कर जानणिया माज महला तीजा तेरियां खाणी तेरियां बाणी बिन नावै

मनमुख परम भुलावणिया आपे देवै शब्द बुलाए महली महल सहज सुख पाए नानक नाम मिले बड़ियाई आपे सुन सुन ध्यावणिया माज महला तीजा सतगुर साची सिख सुनाई हर चेतहो अंत हुए सखाई हर अगम अगोचर।

है। अमृत मन तन बाणी रत्ता अमृत सहज सुना बनया। मन मुख भूला दूजै पाए खुआए नाम न लेवै मरै बिख खाए।

गुरमते आप बुझावणिया रहाउ सब एका जोत जाने जे कोई सतगुर सेव्या प्रगट होई गुप्त प्रगट वर

अनहद तुम बाणी दर सच्चै सोभा पावनिया। निर्मल ते सब निर्मल होवै, निर्मल मनुआ हर शब्द परोवै। निर्मल नाम लगे बड़ भागी, निर्मल नाम सुहावनिया। सो निर्मल

मिलै ता चूकै फेरा, जां तुद भावै ता नाए रचावै, तू आपे नाउ जपावणिया। गुरमति हर मन वसाया, हरख सोग सब मोह गवाया, एक सिउ लिव लागी।

रहाओ। गुरमुख जीवै मरै परवान, आरजा ना छीजै शब्द पछाण। गुरमुख मरै ना काल ना खाए, गुरमुख सच समावणिया। गुरमुख हर दर शोभा पाए, गुरमुख विच हो आप गवाए। आप तरै कुल सगले तारे, गुरमुख जन्म सवारणिया। गुरमुख दुख कदे ना लगै शरीर, गुरमुख होमै चूकै पीर। गुरमुख मन निर्मल।

गुरमत हर रस पावणिया इस गुफा मह एक थान सुहाया पूरा गुर हौमै भरम चुकाया आन दिन नाम सलाहन रंग राते।

संत चुग है नित गुरमुख होई, संत चुग है नित गुरमुख होई, इशनान करह सदा दिन राती, हो मैं मैल चुका बनया।

आठ पहर तुद जापे पवना धरती सेवक पायक चरणा खाणी बाणी सर्व निवासी सबना कै मन पावणिया साचा साहिब गुरमुख जापै पूरे गुर कै शब्द सियापै जिन पिया से ही तृप्ता से सच्चे सच अगावणिया तिस कर सहज

कौन कर्म कौन निष्कर्मा, कौन सुख है कहाए जियो, कौन सो सुखिया कौन सो दुखिया, कौन सो सनमुख कौन वे मुखिया, किन बिद मिली।

वही लिखिया तुर संजोग वडभागी मेरा प्रभ मिले ता उतरह सब वियोग नानक को प्रभ राज।

मंगिर माहे सोहंदियां हर तर संग बैठड़ियां तिनके सो भाक्या गणी जे साहिब मेलड़ियां तन मन मौलिया राम स्यों संग साध सहेलड़ियां।

मैं मर जाती। गुरमुख रंग चलू लिया रंग हर रंग राती, सो सेव हो सत निरंजनो हर पुरख बिधाती। तू आपे आप सुजाने वट पुरख बिडाती, जो मन चित तुद ध्याए दे मेरे सचिया, बल बल हो तिन जाती।

पहला ना सूर सस मंडलो ना सपद दीप न जलो अन्न पौन फिर ना कोई एक तुई महला पहला ना रिजक दस्त आकसे हमारा एक आस वसे अस्त एक दिगर कुई एक तुई महला पहला प्रंदय ना ग्राह जर दरख्त आब आस कर।

भगत करहै मूर्ख आप जनावहै, नच नच टपहै बहुत दुख पावहै। नचै टपै भगत ना होए, शब्द मरै भगत पाए जन सोए। भगत वशन

गुरमुख नाम निधान लय दरगाह लय छिडाए रहाउ। लख चौरासी परम दे मन हठ आवै जाए, गुर का शब्द न चीन्यो फिर जोनी पाए। गुरमुख

मन शब्द मरै प्रतीत होए हौं मैं तजे विकार जन नानक करमी पाइन हर नामा भगत पंडहार गौड़ी बैरागण महला तीजा पेई अड़ै दिन चार है हर हर लिख पाया सो बावंती नार है गुरमुख गुण गाया पेव कड़ै गुण समलै सहुरै वास पाया गुरमुख सहज समाणिया हर हर मन पाया ससुरै पेय फिर बसै कहो कित बिद पाइय।

लिखाया, तुर मस्तक पूरा हर हर नाम ते आया, पेटिया गुरसूरा मेरा पिता माता हर नाम है हर बंधक बीरा।

मुरारा शिव शक्त मिटाइया चूका अंधियारा तुर मस्तक जिन कौ लिखिया तिन हर नाम प्यारा हर कित बिद पाई संत जन हो जिस देख हों जीवा हर बिन चसा ना।

तार भौजल अकथ कथा सुन हर की। गोविंद सत्संगत में लाए, हर रस रसना राम गुण गाए रहाओ। जो जन त्याव है हर हर नामा, तिन दासन दास करो हम रामा। जन की सेवा उत्तम कामा, जो हर की हर कथा।

दिन सजाए कूरा कच पाचा, जन नानक प्रीत तृप्त गुर साचा, गौड़ी ग्वारे री महला चौथा। सतगुर सेवा सफल है बनी, जित मिल हर नाम ते आया हर तनी,

तावत पंच रहे हर त्याया, आन दिन नगरी हर गुण गाया। सतगुर पग धूर जिन्ना मुख लाई, तिन कूड़ त्यागे हर लिव लाई। ते हर दरगाह मुख उजल पाई, गुर सेवा आप हर भावै। कृष्ण बल भद्र गुर पग लग प्या।

सतगुरा जब गुरु बोलहे तब विषम होए जाए। हम जैसे अपराधी अवर कोई राखे, जैसे हम सतगुरु राख लिए छाए। तू गुर पिता, तू है गुर माता।

नाम हर हर जग हर हर जग अवखद हर हर नाम हर हर जग अवखद हर हर नाम हर साथे तिनके पाप दोख सब बिनसे जो गुरमत राम रस खाते जिनको लिखत लिखे तुर मस्तक

हम मूड मुगध अशुद्ध मत होते गुर सतगुर कै बचन हर हम जाने रहाओ। जितने रस अनरस हम देखे सब तितने फीक फीकाने हर का नाम अमृत रस चाखिया मिल सतगुर मीठ रस गाने। जिनको गुर सतगुर नहीं भेटिया ते साकत मूड देवाने तिनके कर्म हीन तुर पाए देख दीपक मोह पचाने। जिनको तुम दया कर मिलहो ते हर हर सेव लगाने जन नानक हर हर हर जप प्रगटे।

गुर ज्ञान गुरु लिव लागे, अज्ञान अंधेरा बिनस बिनासयो, घर वस्त लही मन जागे, साकत बद्धक माया तारी, तिन जम जोहन लागे।

सब सतगुर आगै जिन विछड़िया हर गल लाया मेरा अंतर प्रीत लगी देखन को गुर हिरदे नाल दिखाया सहज अनंत

पुरख अजन्मा वडभागी मिल रामा। गुरजोगी पुरख मिलिया रंग माणी जियो, गुर हर रंग रतड़ा सदा निर्बाणी जियो। वडभागी मिल सुगड़ सुजानी जियो, वडभागी

इस ग्रह में कोई जागत रहे साबत वस ओह अपनी लह रहाओ। सगल सहेली अपने रसमाती ग्रह अपने की खबर न जाती मुसन।

आस पहर हर हर गुण गाओ, कहो नानक हौ तिस बल जाओ। राग गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा, चौ पदे दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जो परायो सोई अपना, जो तज छोड़न तिस स्यों मन रचना।

सुन होसी सुख दुख कहां दिखायो। खंड ब्रह्मांड का एक कोठाना गुर पर्दा खोल दिखायो। नौनिध नाम निदान।

सिमर सिमर कसमल सब हर रे। मानस देहे ना मानस देहे बहुर नह पावे, मानस दे बहुर नह पावे, कशु कशु उपाओ मुक्त का कर रे। मानस दे बहुर नह पावे, कशु उपाओ।

कहावों रिद सिद्ध बुलावों ताज कुल है सिर छतर बनावों बिन जगदीश कहां सच पावों खान मलूक कहावों राजा अबे तबे कूड़े है पाजा अबे तबे कूड़े है पाजा बिन गुर शब्द न सब

अंतर साच सहज घर आवह राजन जान परम गत पावह सच करनी गुर परम चुकावह निर्भउ कै कर ताड़ी लावह हों हों कर मरना क्या पावह पूरा गुर भेटे सो चगर चुकावह।

सी अलख अपेवा सुल्तान खान बादशाह नहीं रहना ना मोह भूले जम का दुख सहना मैं तार नाम ज्यों राखो रहना।

सुख तारा इत उतरा खो दीन दयाला तौ शरणागत नदर निहाला रहाओ जह देखो तह रव रहे रख राखन हारा तू दाता भुगता तू है तू प्राण अधारा किरत पया अद ऊर दी बिन ज्ञान बिचारा बिन उपमा जगदीश की बिन सैना अंधियारा जग बिन सत हम देखया लोभे अहंकारा गुर सेवा प्रभ पाया सच मुक्त द्वारा निज घर महल अपार को अपरंपर सोई बिन शब्द थिर को नहीं बूझै सुख होई क्या ले आया ले जाए क्या पास है जम जाला डोल बद्दा कस जेवरी आकाश पाताला

सब ब्रह्म समाया। राग गौड़ी ग्वारे री महला तीजा अष्टपदिया। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मन का सूतक दूजा पहाओ परमे फूले आवो जाओ। मन मुख सूतक कब है न जाए जिच।

आए। गुरमुख कर्म धर्म सच होई, गुरमुख अहंकार जलाए दोई। गुरमुख नाम रते सुख होई, अपना मन पर बुद्ध हो बूझो सोई। लोक समझावहो सुने ना कोई, गुरमुख समझो सदा सुख होई।

मनमुख कर्म करे बहुत अभिमाना, बग ज्यों लाए बहै नित ध्याना, जम पकड़िया तब ही पछताना। बिन सतगुर सेवे मुक्त ना होई, गुर प्रसादी मिले हर सोई।

रहे गुर कै शब्द पंच संघारे आप तरे सगले कुल तारे माया मोह नत बाजी पाई मनमुख अंध रहे लपटाई गुरमुख अलिपत रहे लिवलाई बहुते पेख करे पेख तारी अंध

दुख खाए, जम डंड सहे सदा दुख पाए, जमुआ ना जो है हर की शरणाई, होमै मार सच लिवलाई, सदा रहे हर नाम लिवलाई।

मांग हेलई हर आपे कृपा करे नाम देवै गुरमुख रतन को विरला लेवै नानक गुण गावै हर अलख अपेवै।

इहो जग भरम भुलाया मोठ गौली पाए जिन्ना सतगुर भेटिया तिन नेड़ न पिटै माए सतगुर सेवन सो सोहणे हौमै मैल गवाए शब्द रत्ते से निर्मले चल है सतगुर पहाए।

छड विकराल हर हर नाम संभाल तू हर मुक्त करे अंतकाल मन कर हला बट भागिया तू ज्ञान रतन संभाल गुर ज्ञान खड़े।

पंजवा अष्टपदियां एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद। जब एहो मन मह करत गुमाना तब एहो बावर फिरत बिगाना। जब एहो हुआ सगल की रीना ता तेर मैया कट कट चीना सहज।

तब इसको है मुश्किल भारी, जब इन करने हार पछाता तब इसनो नाही किछताता, जब इन अपनो बांधियो मोहा आवे जाए सदा जम जोहा, जब इसते सब बिन से परमा भेद नाही है पार ब्रह्मा, जब इन किश कर माने भेदा तब ते दुख दंड अर खेदा, जब इन एको एकी बूझया तब ते इसनो सब किश सूझया, जब एहो तावे माया अर्थी न तृप्तावे न तिसलाथी, जब इसते एहो होयो जौला पीछे लाग चली उठ कौला, कर कृपा जो सतगुर मिलियो मन मंदिर मह दीपक जलियो, जीत हार की सोजी करी तो इस कर की कीमत परी, करन करावन सब किश एक है।

होए। गुर शुभ दृष्ट सब ऊपर करी, जिसका हृदय मंत्र दे हरी। अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा, कहो नानक जिस सतगुर पूरा। गौड़ी महला पंजवा, गुर का शब्द रिद अंतर तहरै।

दिन सबेताला गिर तर धरण गगन अर तारे रव सस पवन पावक नीरारे दिन सरैन बरत अर भेदा शास्त्र सिमरत दिन सहेंगे बेदा तीर्थ देव देहुरा पोथी माला तिलक सोच पाक होती तोती डंडौत प्रसादन भोगा गवन करे गो सगलो लोगा जात वर्ण तुर्क अर हिंदू पश पंखी अनक जोन जिंदू सगल पसार दिसै पासारा दिन सजाए गो सगल आकारा सहज सिहत भगत तत ज्ञाना सदा आनंद निश्चल सच थाना तहां संगत साध गुण रसै अन पौ नगर तहां सद वसै तह पौ परमा सोग ना चिंता आवन जावन मृत ना होता तह सदा आनंद।

साध संग तरै गौड़ी महला पंजवां जो इस मारे सोई सूरा जो इस मारे सोई पूरा जो इस मारे तिस है वड्याई।

नाम समाहे। जो इस मारे तिस की तृष्णा बुझे, जो इस मारे सो दरगह सिझे। जो इस मारे सो तनवंता, जो इस मारे सो पतवंता।

आत्म घाती साकत नीच तिस कुल नहीं जाती जिस भया कृपाल तिस सतसंग मिलाया कहो नानक गुर जगत तराया।

ना हम कर्म ना धर्म सोच प्रभ कह पूजा अपायो पौ खंडन दुख पंजनो भगत वछल हर नायो अनाथ है नाथ कृपाल दीन समृत संत ओटायो निर्गुणी आरे की बेनती देहो

सागर निमख सिमरत साधिए कल मलह दहता शुद्ध करता दिन सरैन अराधो बिनवंत नानक।

तरा गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्कारा सलोक आप है किया कराया आप है करने जोग नानक एको रव।

या जुग मह एकह कौ आया, जन्मत मोहयो मोहनी माया, गर्भ कुंट मह उर्ध तप करते, सास सास सिमरत प्रभ रहते, उर्ज परे जो छोड़ छिडाना, देवनहार मन है बिसराना, कार हो कृपा जिस है गुसाई, इत उत नानक तिस बिसरहो नाही। श्लोक

अन्धकूप ते तिह कढ़हो जिह होवहो सो प्रसन्न न्या कै हाथ समरथ ते कारण करनै जोग नानक तिह उस्तत कर

अखर महंत्र पवन प्रवतहारे, अखर कर कर वेद विचारे, अखर शास्त्र सिमरत पुराना, अखर नाद कथन बखियाना, अखर मुकत जुगत पह परमा, अखर मुकत जुगत पह परमा, अखर कर्म किरत सोच धर्मा,

अष्टपदी सिमरौ सिमर सिमर सुख पावौ काल कलेश तन माहे मिटावौ सिमरौ जास बिसंभर एकै नाम जपत अगंत अनेकै वेद पुराण सिमरत सुधाखियर कीने राम नाम एक आखियर।

सिमरन रिद सिद्ध नौ निध प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत बुद्ध प्रभ कै सिमरन जप तप पूजा प्रभ कै सिमरन दिन सह दूजा प्रभ कै सिमरन तीर्थ इशनानी प्रभ कै सिमरन दरगाह मानी प्रभ कै सिमरन हुए सो पहला प्रभ कै सिमरन सुफल फला

से पुरख प्रधान प्रभ कौ सिमरहें से बे मोहताजे प्रभ कौ सिमरहें से सर्व के राजे प्रभ कौ सिमरहें से सुखवासी प्रभ कौ सिमरहें सदा।

अष्टपदी। जह मात पिता सुत मीत ना पहाई, मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई। जह महा भयान दूत जम दलै, तह केवल नाम संग तेरे चलै। जह मुश्किल होवे अत पहारी, हर को नाम खिनमा है उदाहरी। अनक पुनः चरण करत नहीं तरै, हर को नाम कोट पाप पर हरै। गुरुमुख नाम जपहो मन मेरे, नानक पावहो सुख कनेरे। सगल सृष्ट को राजा दुखिया, हर का नाम जपत हुए सुखिया। लाख करोरी बंधन परै, हर का नाम जपत निस्तरै। अनक माया रंग ते

निर्मल कर्म सगल क्रिया मह उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरिया सगल उदम मह उदम भला हर का नाम जपहो जी सदा सगल बानी मह अमृत बानी हर को जस सोन।

अष्टपदी रमैया के गुण चेत परानी कवन मूलते कम दृष्टानी जिन तू साज स्वार शिंगारिया गर्भ अग्न मह जिन्हें उबारिया बार व्यवस्था तुझे प्यार है दूध पर जोबन भोजन सुख सूद।

सिमरहु तिस रसना जिहे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई है ध्यावन जोग जिहे प्रसाद पाठ पडंबर हंडावहि।

साध कै संग नहीं कछ काल, दर्शन भेट त होत निहाल। साध कै संग कलूख तहरै, साध कै संग नरक पर हरै।